मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि तदनुसार 9 जून सन 2026 सुबह के 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के

0: क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे आचार्य महावीर भक्ति रचनाएं, जिन्हें स्वर दिए थे रतन मोहन शर्मा, वीणा सहस्त्रबुद्धि, राजेश मिश्रा और साथियों ने। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार।
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शहर छोड़कर गांव में वास किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत माता ग्रामवासिनी है। मैं अपनी पैतृक भूमि का कर्ज अदा करने की भावना से यहाँ आया हूँ। ग्रामवासियों के बीच काम करने का अलग ही आनंद है। वो कहते हैं कि साहित्य का काम जनता से जुड़ने पर आगे बढ़ता है। तभी तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। कवियों को नवीन काव्य चेतना से अनुप्राणित निश्चित दिशा प्रदान करने में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना का शुभारंभ सन 1903 में किया था। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस नवीन युग का आविर्भाव हुआ उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो कि संवत 1950 से लेकर संवत 1975 तक का समय माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। द्विवेदी जी की लेखनी में तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश, विद्रोह की भावना एवं भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है, जिसको न निज देश का निज जाति का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा जीवित मृतक समान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी समाज का सर्वांगीण उत्थान चाहते थे। द्विवेदी जी के चिंतन में व्यापक धार्मिक भावना देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के नेतृत्व में जातीयता एवं धर्म आडंबर के विरुद्ध अभियान चलाकर मानव धर्म को प्रोत्साहित किया गया। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाने की बात सोचे जाने लगी। इस प्रकार परंपरागत धर्म का स्थान मानव प्रेम ने ले लिया। मानवतावाद के आदर्श के कारण शोषित, पीड़ित, दलित एवं दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट होने लगी। द्विवेदी जी का विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति मानव प्रेम से ही संभव है, और इस प्रकार ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में या विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। द्विवेदी जी द्वारा अवतारवाद का खंडन करते हुए रामायण नामक निबंध में राम को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। उनके अनुसार वाल्मीकि का संदेश नर से नारायण का है, नारायण से नर का नहीं। समाज को आदर्श स्वरूप प्रदान कराने में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामायण नामक निबंध में द्विवेदी जी ने राम सीता के दाम्पत्य प्रेम, पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिए आत्म त्याग, पत्नी के प्रति पति की निष्ठा, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य आदि सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित कर वर्तमान समाज में हो रहे मूल्य संक्रमण को रोकने का सत प्रयास किया गया और उच्च आदर्श स्थापित करने की भरसक कोशिश की गई। हिंदी पत्रकारिता में द्विवेदी जी ने विषय वस्तु के साथ साथ भाव, भाषा एवं अभिव्यक्ति को नई दिशा प्रदान की थी। विषय वस्तु की दृष्टि से उन्होंने भारतीय नारी की शिक्षा, स्वाभिमान, अस्मिता आदि समस्याओं को पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को प्रकाशित कर रचनाकारों का ध्यान उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी जाति के प्रति केंद्रित कराया। इसके बाद उपेक्षित नारियों से संबंधित साहित्य का सृजन अधिकाधिक होने लगा। द्विवेदी जी के अनुसार श्रृंगारिक सृजन से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार साहित्य सृजन में श्रृंगार के स्थान पर भक्ति रस की प्रधानता परिलक्षित होने लगी।
0: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें में।

पशु में संक्रामक रोग और टीकाकरण विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र पाल की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर सुनेगा विटामिन्स विषय पर डॉक्टर डी के अग्रवाल से रियाज खान की बातचीत। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे संतोष देवी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत करेंगे देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर रहेंगे राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर ईश्वर सिंह खींची। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनेगा शब्बीर अहमद खान का राग तोड़ी में ख्याल गायन। कार्यक्रम आज के कलाकार में 11:00 आज की कलाकार रहेंगी फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर। 11:30 पर आप सुनते हैं समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज का विषय रहेगा बढ़ती गर्मी हम सबकी जिम्मेदारी। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 1:15 पर हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज का चर्चा का विषय रहेगा जनजाति गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा। इसी के साथ सुनेगा अनुराधा तुली से वार्ता गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुन सकेंगे जोनाकी भट्टाचार्य के गाए कुछ गीत और भजन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 2:30 पर सुना जा सकेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग मिश्र तिलक कामोद में ठुमरी गायन, और उसके बाद आप सुनेंगे बेगम परवीन सुल्ताना का राग भैरवी में ठुमरी गायन। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। संवादक गरिमा शाह के और प्रस्तुतकर्ता रहेंगे अनिंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का संगीत पद प्रसंग। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम और राजेंद्र कचरू। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है। इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अन पूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी वाणी जयराम और राजेंद्र कचरो, संगीतकार थी सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं पशुओं में संक्रामक रोग और टीकाकरण विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र पाल की वार्ता।
1: किसान भाइयों, हमारे ग्रामीण परिवेश में खेतीबाड़ी के बाद पशुपालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर लाखों करोड़ों ग्रामीणों की आजीविका निर्भर है। हमारे पालतू पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर व मुर्गी आदि हैं, जिनसे हमें दूध, मांस, ऊन, अंडा, खाल और खाद प्राप्त होती है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में विश्व के अन्य सभी देशों की तुलना में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है। बावजूद इसके पशुओं की संख्या की तुलना में दुग्ध उत्पादन काफी कम है। कारण, हमारे यहाँ प्रति पशु औसत दुग्ध उत्पादन विकसित देशों की अपेक्षा निम्नतम स्तर पर है। साथ ही मांस, ऊन, अंडा आदि का उत्पादन भी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इसके अनेकों कारण हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पशुओं के रखरखाव का कुप्रबंधन, पशुओं में कुपोषण और चारे का अभाव, पशुओं की नस्लों में गिरावट और पशुओं में होने वाले रोग हैं। हमारे यहाँ पशुओं के रोगों को संक्रामक और असंक्रामक रोगों में विभाजित किया गया है, जिसमें संक्रामक रोगों का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि संक्रामक रोगों के प्रकोप से बहुत अधिक हानि पशुपालकों को उठानी पड़ती है। हमारे देश में प्रमुख रूप से खुरपका, मुंहपका, गलगांठू या घुर्रका, जहरवाद या लंगड़िया अथवा फड़सूजन, पोंकनी, पोंका या पशुफ्लैग, जहरी बुखार या गिल्टी रोग या विषहरी या एंथ्रेक्स तथा संक्रामक थनेला रोग अथवा ब्रुसेलोसिस रोग होते हैं, जिनके रोग प्रतिरोधक टीके विकसित किए जा चुके हैं। इसके अलावा सूकर ज्वर, चेचक रोग, क्षय रोग, भेड़ की चेचक, बकरियों में विसी, कवक जनित गर्भपात, कवक जनित थनेला

वाला रोग, दाद, सर्रा एवं काक्सीडियोसिस जैसे रोग भी पशुओं में छूत के माध्यम से पैदा हो जाते हैं। प्रतिवर्ष पशुओं में फैलने वाले प्रमुख संक्रामक रोगों के कारण पशुपालकों को आर्थिक हानि उठाने के साथ ही देश को भी करोड़ों रुपयों की आर्थिक क्षति झेलनी पड़ती है। प्राय पशुओं में संक्रामक रोग विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवियों द्वारा संचारित होते हैं। छूत के माध्यम से फैलने वाले सभी रोग प्राय संक्रामक रोग होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग छूत से फैलने वाले नहीं होते हैं। इसलिए संक्रामक रोगों के फैलने के ढंग तथा उनसे बचाव की जानकारी पशुपालकों को होना अत्यंत आवश्यक है। पशुओं में संक्रामक रोग दूषित आहार, चारा दाना, अनुचित प्रजनन, अस्वस्थ व गंदा बाड़ा, गंदा पानी, अत्यधिक पशुओं का एक साथ रहना, दूषित प्रबंध आदि के कारण पैदा हो सकते हैं। अतः इसके बचाव हेतु बताई जा रही सावधानियां बरतनी चाहिए। पशुपालक नए पशु खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। अपने पशुओं में केवल उन्हीं पशुओं को शामिल करना चाहिए जिनकी टीबी तथा संक्रामक गर्भपात जैसी भयंकर बीमारी की जांच की जा चुकी हो। ध्यान रखें कि नए पशु को खरीदने से पूर्व पशु चिकित्सक से उसका स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवा लेना चाहिए। पशुशाला की फर्श साफ स्वच्छ तथा उसमें किसी प्रकार के छिद्र नहीं होने चाहिए ताकि उसमें कोई गंदगी, छूत, चीचड़े इत्यादि रोग फैलाने का कारण बनने पाए। पशुओं को दूषित एवं बासी चारा दाना कदापि नहीं खिलाएं। संक्रामक रोग फैलने की दशा में पशुओं को चारागाह में चरने नहीं जाने दें। पशुओं का मूत्र व गोबर आदि पशुशाला से काफी दूर एकत्र करना चाहिए। पशुशाला संभवतः प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में एक बार फिनाइल डालकर धुलवानी चाहिए। पशुशाला के आसपास तथा नालियों के किनारे बुझा हुआ चूना डलवाना चाहिए। स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से अलग रखना चाहिए। गुर्रका जहरवाद बीमारी से मृत पशु को जमीन में 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें ऊपर व नीचे नमक और चूना डलवा कर गाड़ देना चाहिए। पशुपालक हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि संक्रामक रोग से ग्रसित पशु की मृत्यु होने के बाद पशु को कभी भी खुला न फेंकें, वरना बीमारी संपूर्ण गांव तथा आसपास के गांवों में भी फैल सकती है। पशुओं की नादों की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। पशुओं को पीने के लिए साफ व ताजी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वर्ष में कम से कम एक बार पशुशाला की चूना से पुताई अवश्य करवा लेना चाहिए। सर्दियों में सर्द हवा चलते वक्त तो वह गर्मियों में लू के समय पशुशाला की खिड़की और दरवाजे टाट के पर्दों से ढके होने चाहिए। पशुओं की देखभाल में लगे व्यक्ति के स्वस्थ होने के अलावा दूध आदि के बर्तन व अन्य सामान की प्रतिदिन भली भांति सफाई होनी चाहिए। पशुओं को समय समय पर बाह्य परजीवी जैसे चीचड़ों, जुओं, पिस्सू व माइट्स का नियंत्रण विसंक्रामक तथा कीटनाशक स्प्रे जैसे सेविन, बूटाक्स, मेलाथियन आदि द्वारा वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए, जिससे ये रोग के प्रसार को बढ़ावा न दे सकें। इसके साथ ही पशुपालक भाइयों, संक्रामक रोगों के बचाव के लिए सबसे कारगर और अत्यंत प्रभावी इन रोगों का टीकाकरण है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात रोग से बचाव उपचार की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इसलिए प्रमुख संक्रामक रोगों का समय समय पर प्रतिवर्ष टीकाकरण कराते रहना चाहिए। परंतु जब भी टीकाकरण कराएं, विशेष ध्यान ये रखें कि पशुओं में टीकाकरण समय भीतर तथा संयुक्त रूप से संपूर्ण गांव और आसपास के गांवों में एक साथ होना चाहिए, जिससे इन रोगों के कीटाणु नहीं पनपने पाए। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग का टीका वर्ष में 2 बार क्रमशः फरवरी, मार्च तथा अगस्त सितंबर माह में तथा अन्य संक्रामक रोगों जैसे गलगोंटू, जहरवाद, पोंकनी, एंथ्रेक्स इत्यादि का टीका वर्षा ऋतु शुरू होने से 1 माह पूर्व ही लगवा लेना चाहिए। वैसे खुरपका मुंहपका का टीकाकरण यह फरवरी मार्च में है व अगस्त सितंबर में ही कराया जाता है, परंतु यदि किसान भाई इस समय टीकाकरण न करा पाए हों तो उस टीके को अब भी करा सकते हैं। इसलिए टीकाकरण जब करा लें उचित है, क्योंकि अधिकांश संक्रामक रोग बरसात में ही फैलते हैं। प्राय किसी भी

0: टीका 6 माह तक पशु पर प्रभावी रहता है तथा पशु के टीका लगने के बाद उस पशु में टीका की वैक्सीन द्वारा विकसित की जाने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करने में कम से कम 1 माह का समय लग जाता है। अतः पशुपालकों को पशुओं का टीकाकरण रोग फैलने से 1 माह पूर्व ही बचाव के तौर पर करवा लेना चाहिए। पशुओं में टीकाकरण के समय विशेष सावधानी ये रखें कि टीका हमेशा सुबह सूर्योदय से पूर्व तथा सायंकाल सूर्यास्त के बाद ही लगवाना चाहिए, क्योंकि टीका की वैक्सीन थोड़ी गर्म प्रकृति की होती है। टीकाकरण के उपरांत पशुओं को ताजी पानी से नहलाकर हवा युक्त छायादार ठंडे स्थान पर बांध देना चाहिए। इस प्रकार से किसान पशुपालक भाई पशुओं को प्रतिवर्ष फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचाव कर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे पशुओं में संक्रामक रोग और टीकाकरण विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र पाल की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2

0: लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters, their children will receive free education, and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. 8 people were killed in the fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited last evening. 6 people were injured, with the condition of 2 being critical. The Union Ministry of Steel said the accident occurred during casting operations when a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel into the tundish. Following the explosion, a massive ball of fire rose to the ceiling. Iran and Israel have announced a halt in the attacks against each other following an appeal by US President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action if Israel continues its strikes against Hezbollah targets in Lebanon. On the other hand, Israeli Defense Minister Israel Katz has also warned that Israel will again target Hezbollah's stronghold in southern Beirut if attacks on northern Israel continue. The latest exchange marked the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire was reached in April. Iran launched missiles towards Israeli territory on Sunday night, describing the attack as retaliation for Israeli strikes on Hezbollah strongholds near Beirut. In response, Israel targeted a petrochemical facility in southwestern Iran, alleging that it was involved in ballistic missile production. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, External Affairs Ministry said, these developments are a matter of utmost concern to the international community. India has called on all parties to immediately

0: de-escalate tension and ensure that civilians are not harmed. The ministry also appealed to conclude ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The Embassy of India in Muscat, Oman has confirmed the rescue of 24 Indian seafarers aboard MT Merrivex after a fire incident south of the Strait of Hormuz. The embassy also thanked the Omani authorities for their swift response. Earlier yesterday, during an interministerial briefing, the spokesperson of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said a fire was reported at around 1:30 p.m. Mr. Sharma said, based on the preliminary information received, all Indian seafarers are presently safe. He further informed that the ship was hit by a projectile is still being verified. World Health Organization, WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus is currently in Uganda to personally assess the country's readiness to respond to the ongoing Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo and to support enhanced cross-border coordination. In women's cricket, India defeated West Indies by 26 runs in their first warm-up match ahead of the ICC Women's T20 World Cup in Cardiff, UK yesterday. After being invited to bat first, Harmanpreet Kaur led women in blue, posted 179 for 8 in the stipulated 20 overs, powered by Bharti Fulmali's unbeaten 56 runs off 40 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विटामिन्स विषय पर डॉक्टर डी के अग्रवाल से रियाज खान की बातचीत।
2: डॉक्टर साहब, आज आपसे सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि विटामिन्स होता क्या है।
3: आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है। यथार्थ रूप में देखा जाए कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बेसिकली 6 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके नंबर फर्स्ट फैट, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 मिनरल्स, नंबर 6 वाटर। ये विटामिन्स और मिनरल्स दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी को बहुत माइक्रो वेट में जरूरत पड़ती है, माइक्रोग्राम में जरूरत पड़ती है। उनमें से विटामिन्स जिसके के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चीज है। यथार्थ में विटामिन जो है ये बाय कैटलिस्ट है।
2: अच्छा।
3: उत्प्रेरक का काम करती है।
2: हाँ हाँ।
3: बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होते हैं, उनमें उनको प्रॉपर चलाने के लिए और सुचारू रूप से काम करने के लिए विटामिन्स का रोल है।
2: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये विटामिन्स का आविष्कार कब और किस तरह से हुआ और ये आम लोगों में इसके बारे में जानकारी कब हुई?
3: इसका इतिहास तो बहुत पुराना है।
2: अच्छा।
3: जहाँ तक कि जन धारणा है कि वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की, सन 1700 में वो समुद्र यात्रा से निकला था अपने दौरे पे, तो उसने देखा कि उसके जो 25% नाविक थे, सेलर्स थे, उनके दांतों में मसूड़ों से खून आता था।
2: अच्छा अच्छा।
3: उसकी वजह ये थी कि दो दो महीने तीन तीन महीने हो जाते थे, हरी सब्जी खाना नहीं मिलती थी। नतीजा ये होता था कि उनके खून आना शुरू हो जाता। पहले ये लोग समझे नहीं, बाद में ये ट्रेस आउट हुआ कि एक्चुअली ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है।
2: अच्छा।
3: तो इस तरह से लोगों में समझ आई कि विटामिन का रोल है और इसकी आवश्यकता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या विटामिन लेना जरूरी है?
3: हाँ, देखा जाए तो विटामिन्स की जरूरत सिंस बर्थ।
2: अच्छा।
3: और अप टू टिल डेथ।
2: अच्छा अच्छा।
3: पूरे होल लाइफ विटामिन्स की जरूरत है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि विटामिन्स ही एक ऐसी चीज है जो कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से रखती है। सारी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस एक्शंस होते हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है, वो सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है।
2: अच्छा।
3: पर हम लोग जो डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उसमें सारी विटामिन्स होती हैं।
2: अच्छा।
3: पर जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो केवल मदर के ब्रेस्ट फीड पे रहता है।
2: हाँ हाँ।
3: माँ के दूध पे रहता है या बॉटल फीड पे रहता है, तो उस टाइम उसको जो है सप्लीमेंट्री विटामिन्स की जरूरत होती
2: जी,
3: है
2: जी।
3: क्योंकि डॉक्टर्स लोग हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं।
2: हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज

0: ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार लेते हैं, तो क्या उस दौरान हम विटामिन्स न लें या नहीं लेना चाहिए?
1: हाँ, आपकी बात सही है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, परफेक्ट डाइट लेते हैं, जो कि एक सर्टिफाइड डाइट है,
0: जी।
1: तो फिर हमें एक्स्ट्रा विटामिन्स लेने की जरूरत नहीं है।
0: और मान लीजिए अगर हम लेते हैं तो क्या होता है?
1: देखिए, विटामिन्स के बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा आगे,
0: जी
1: पर यहाँ आपने जो विषय उठाया है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं

0: जो पानी में घुल जाती है
1: हाँ हाँ
0: वाटर सोल्युबल बोलते हैं, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आती है,
1: अच्छा
0: और जो फैट सोल्युबल जो वसा में जो घुल जाती हैं, फैटी एसिड्स में घुल जाती हैं, तो वो है विटामिन ए,
1: जी
0: विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के।
1: अच्छा
0: इसके अलावा और दो तीन तरह विटामिन हैं जिनका भी कोई ज्यादा रोल नहीं है, पर आपको जानकारी के लिए बता दें जनता को कि विटामिन पी है,
1: हाँ हाँ
0: विटामिन ई भी है, ई तो फैट सोल्युबल में आ गया। हाँ यही है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स का भी शरीर में होना जरूरी है?
0: बिल्कुल जरूरी है।
1: अच्छा, अगर मान लीजिए कि विटामिन ए की कमी है तो हमको किस तरह के रोग होने के चांसेस होते
0: हाँ,
1: हैं?
0: विटामिन ए शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है
1: जी
0: तो हम लोगों को जिसे आम भाषा में रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, वो हो जाता है। आपने देखा होगा गांव में जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बैलेंस डाइट नहीं मिलती बेचारे, तो उनको क्या होता है शाम को छुटपुटा होता है
1: हाँ
0: तो उनको
1: हाँ
0: नजर नहीं आता, साफ नजर नहीं आता,
1: हाँ धुंधलापन लगता
0: धुंधलापन
1: है
0: नजर
1: जी।
0: आता है, और यही स्थिति अगर बरकरार रहती है तो वो ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है।
1: अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल और दूसरा है फैट सॉल्युबल।
0: जी
1: तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जिसमें बी कॉम्प्लेक्स हैं,
0: जी
1: तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2,
0: हाँ
1: B6,
0: जी
1: कुछ
0: हाँ,
1: B12
0: B12,
1: है,
0: B6
1: तो इनके रोल क्या हैं?
0: जी। देखिए विटामिन B1 जो है
1: जी
0: बेसिक, अगर मोटे रूप से हम आपको बताएं कि विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, इसका एक
1: जी
0: परिवार है B1, B6, B2,
1: हाँ
0: B3,
1: हाँ हाँ हाँ
0: B5।
1: जी
0: तो इनका जैसे विटामिन B1 है,
1: जी
0: इसे अगर ना लें तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है,
1: अच्छा
0: ठीक है ना। विटामिन B3 है
1: जी
0: तो उससे जो है हम लोगों को छाले हो जाते हैं,
1: अच्छा। और ये
0: लिस्टोमायोसिस
1: डॉक्टर
0: बोलते हैं।
1: विटामिन सी?
0: विटामिन सी जो है दांतों के लिए है, विशेष रूप
1: अच्छा
0: से मसूड़ों के लिए, तो अगर नहीं लेते तो इसका भी रोग हो जाता है।
1: अच्छा। डॉक्टर साहब, एक चीज हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम विटामिन्स किसी भी स्थिति में नहीं लेते हैं तो किस किस तरह के रोग होने की संभावना बनती है?
0: इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एक एक करके।
1: जी
0: जैसे हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से।
1: अच्छा
0: विटामिन ए, अभी जो मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि विटामिन ए नहीं लेते तो बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाती है,
1: सिर्फ बच्चों में ही या
0: बड़ों में भी हो
1: बड़ा?
0: जाती है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: और इसीलिए भारत सरकार और हमारी यूपी गवर्नमेंट इसके लिए नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है।
1: लेकिन हर खास आम के जहन में ये बात आती है कि अगर विटामिन तो है फायदेमंद चीज, इसको लेना चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर हम विटामिन ज्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या नुकसान होने के भी चांसेस हैं?
0: जी देखिए, वैसे आपने कहा कि कितनी लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, तो ये हर आदमी मेन टू मेन डिफर करती है,
1: अच्छा
0: क्योंकि इसकी कोई फिक्स डोज नहीं है।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विटामिन्स विषय पर डॉक्टर डी के अग्रवाल से रियाज खान की बातचीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देश गान।

0: लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके

0: से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल

0: से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न, आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: नई सुबह हो चुकी है, कल की नाकामियों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि असद दोबाली साहब कह गए हैं रास्ता साफ है और शौक सफर जिंदा है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो शहर जिंदा है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
4: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। उज्ज्वला योजना में छूट वाले सिलेंडर की संख्या घटाई गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह बदलाव औसत घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए किया गया। वर्ष 2016 में शुरू कर की गई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को वर्ष में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे। हालांकि पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटकर 9 रह गई थी, जिसे अब घटाकर 4 कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने बताया कि संशोधित सीमा उज्ज्वला लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम कंपनियों को LPG बिक्री पर अब भी प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपए का नुकसान हो रहा है।

गुरुवार से फिर तूफान का खतरा, कड़के की बिजली। ताजनगरी में मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। गुरुवार से फिर तेज गति का तूफान आने की आशंका है। ऐसा दो दिन तक रह सकता है। इस दौरान बारिश होने का अनुमान नहीं है। हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, इसलिए तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, आसमान साफ रहेगा और सुबह से तेज धूप

निकलेगी। साथ में उमस का भी सामना करना पड़ेगा। 10 जून को बादलों की आवाजाही रहेगी, जबकि 11 और 12 जून को तेज रफ्तार धूल भरा अंधड़ या तूफान आ सकता है। इस दौरान तेज बिजली गिरने गरजने की आशंका भी जताई जा रही है। विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना कम है, तूफान के साथ कुछ बारिश या बौछारें हो सकती हैं। इसके बाद दोबारा आसमान साफ होगा और मौसम सामान्य की ओर बढ़ेगा। तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखी जाएगी।

20 जून को होगी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। प्रवेश पत्र 17 जून को जारी किए जाएंगे। 1400 से अधिक सीटों के लिए 4000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। विषय विशेषज्ञों से 20 तक आवेदन आमंत्रित किए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2000 रुपये मानदेय मिलेगा। आवेदन 20 जून तक किए जा सकते हैं। असहाय व्यक्तियों की मदद करेंगे अधिकार मित्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयंसेवक अधिकार मित्र पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित स्वयंसेवक गरीब और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दिलाने में सहयोग करेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून दोपहर 1:30 बजे निर्धारित की गई है। सम्मान निधि चाहिए तो 30 जून तक केवाईसी जरूर कराएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी करने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक ने बताया कि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जनसेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। 6 जून को स्थगित हुई परीक्षा 20 और 26 जून को होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 6 जून को प्रस्तावित कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के कारण ये निर्णय लिया गया। विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 20 और 26 जून को पूर्व निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। एक सूचना के अनुसार कीर्ति पुत्री नीरज कुमार, निवासी ग्राम बाजपुर, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी, दिनांक 7 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा, चेहरा लंबा, शरीर सामान्य, बाल काले हैं, कद 5 फुट 2 इंच, उम्र 20 वर्ष है। कीर्ति ने गुलाबी सलवार सूट पहन रखा था। इस खोई हुई युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना

जनपद मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार आरती पुत्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम कसौली थाना बरनाहल मैनपुरी दिनांक 12 अप्रैल 2026 से लापता हैं। रंग गोरा चेहरा लंबा शरीर सामान्य और लंबाई 5 फुट है। इनकी उम्र 25 वर्ष है। इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बरनाहल मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार हेमलता पत्नी मुरारी लाल निवासी ग्राम अरसनिया थाना बेवर मैनपुरी दिनांक 25 अप्रैल 2026 से लापता हैं। रंग गोरा चेहरा लंबा शरीर सामान्य और कद 5 फुट और उम्र 25 वर्ष है। इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर मैनपुरी को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार प्रियंका पत्नी विकास कुमार निवासी नगला गोवर्धन थाना कोतवाली मैनपुरी दिनांक 15 अप्रैल 2026 से लापता है। इनका रंग गेहुआ चेहरा गोल शरीर सामान्य कद 5 फुट 4 इंच उम्र 27 वर्ष है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। इस महिला के विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर थाना कोतवाली मैनपुरी को सूचित करें। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मजदूरों की लाठी बनेगा JSI, उपचार के लिए खुलेंगे 40 केंद्र। बढ़ती उम्र के साथ कई बीमारियां शरीर को जकड़ लेती हैं। बदलते दौर में 60 से ज्यादा उम्र में मांसपेशियों की कमजोरी बुजुर्गों को असशक्त बना रही है। चिकित्सा की भाषा में इसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। सार्कोपेनिया, इस बीमारी में शरीर में नियंत्रण नहीं रहता। अब चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र के शोधार्थियों के संगठन ने ऐसे बुजुर्गों की लाठी बनने का संकल्प लिया है। संगठन इस बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों के इलाज के लिए देश भर में 40 लैब स्थापित करेगी। इसकी शुरुआत आगरा से होगी। यहां पहली लैब आगामी सितंबर में स्थापित की जाएगी। GSI के डॉक्टर ने बताया कि इनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। आमतौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और 60 के बाद तो मांसपेशियों के द्रव्यमान में तेजी से कमी आने लगती है। इससे मांसपेशियों की ताकत और कार्य क्षमता कम होती जाती है। इससे पीड़ित मरीज चलते चलते गिर जाते हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद खड़े नहीं हो पाते, पानी का ग्लास तक हाथ से नहीं पकड़ पाते। इसे इस उम्र से जुड़ी बीमारी मान लिया जाता है। ये सार्कोपेनिया है, इसे इलाज से नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज करने की कल अंतिम तिथि, परिणाम अटका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर की परीक्षा के बाद कॉलेजों ने प्रयोगात्मक परीक्षा के ऑनलाइन अंक दर्ज नहीं किए हैं। इससे स्नातक और परस्नातक के 2,00,000 छात्रों का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज करने की 10 जून अंतिम तिथि है। इसके बाद 50,000 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं कॉलेजों द्वारा अंतिम तिथि 10 जून से बढ़ाकर 15 जून करने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के बीए, बीएससी, बीकॉम, द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर और परास्नातक स्तर में एमए, एमकॉम, एमएससी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू हुई थी। परीक्षाएं 23 मई को समाप्त हो चुकी हैं, जिनमें 2,00,000 छात्र शामिल हुए थे। जून के पहले सप्ताह तक विश्वविद्यालय प्रशासन को स्नातक और परास्नातक के परिणाम घोषित करने थे। 21 मई को बीएससी का परिणाम, बीसीए का परिणाम जारी किया गया और बीसीए में प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं थी, इसलिए परिणाम घोषित कर दिया गया। मगर स्नातक और परस्नातक के अन्य पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 575 कॉलेज है, जिनमें 375 कॉलेजों ने ही प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज किए हैं। 200 कॉलेजों ने प्रयोगात्मक परीक्षा ही नहीं कराई है और जिन कॉलेजों ने परीक्षा करा दी है उन्होंने ऑनलाइन अंक दर्ज नहीं किए हैं।

छुट्टी के चलते शिक्षकों के बाहर होने के चलते प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए परीक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। कॉलेज संचालकों ने प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून करने की मांग की है।

बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी बेहतर इंटरनेट स्पीड। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ओर से संचालित भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम चल रहा है। एबीपी के तहत मौजूदा नेटवर्क को लीनियर टेपोलॉजी से रिंग टेपोलॉजी में बदला जा रहा है, जिससे नेटवर्क पहले से और बेहतर हो, स्पीड बिना रुके जारी रहे।

दुर्घटनाओं से निपटान के लिए बनेगा विशेषीकृत बचाव दल। राज्य में विशेष आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेषीकृत बचाव दल का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा विभाग को इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा सेवा केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा लोगों को जीवन, उद्योगों और निवेश से भी जुड़ी हुई है। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर अग्नि सुरक्षा और आपात सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरजी के गठन में देरी न की जाए। अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है।

0: है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री

0: राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जाँच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सीटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS

0: निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मर्वेक्स

0: Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सहमुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़री वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़री इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़री तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ज़री इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है।

0: कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 वर्षों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा। क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात टीकाकारी जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएम एसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया

0: के H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने विफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा असलाहत और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अल्कवामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरई अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियां देखी हैं जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलाक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड बोर्ड बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की विफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा।

0: इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता को फिल्म दिल है कि मानता नहीं में। गीत के बोल थे फैज अनवर के और संगीत था नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म राजा में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में फिल्म दीवाना का ये गीत। गीत के बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
3: मैं उपभोक्ताओं से ही आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
2: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिश्चीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1,683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2,499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4,183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रूपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।

0: सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें एक माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। गीत के बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हाथ की सफाई का गीत, जिसे आवाजें दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गुलशन बावरा की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म गाइड का ये गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला था SD बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया फिल्म शोर का ये गीत। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंतिम गीत जिसे गाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने फिल्म शोर से। गीत के बोल थे संतोष आनंद के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं

संतोष देवी के गाए कुछ लोकगीत आपके साथ संगत कर रहे हैं। हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर हैं राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर हैं ईश्वर सिंह खींची।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संतोष देवी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर थे ईश्वर सिंह खींची। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत हमने फिल्म गदर से लिया है, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और प्रीति उत्तम ने। आनंद बख्शी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है उत्तम सिंह ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म सांवरिया में नुसरत बदर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था मोंटी ने। आइए अब सुनते हैं जावेद अली को फिल्म गजनी में।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जावेद अली को फिल्म गजनी में। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के सुर में फिल्म गुलाम का ये गीत। गीत लिखा है सानू ने, संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और एमजी श्रीकुमार के स्वर में फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने, संगीत था प्रीतम का। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शब्बीर अहमद खान का राग तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शब्बीर अहमद खान का गाया राग तोड़ी में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन की 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

आज के कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री, जिन्हें हम फैशन आइकन के रूप में जानते हैं। जी हाँ, वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में जिनका नाम शामिल रहा। लगता है आप पहचान गए हैं कि आज हम किस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, और अगर पहचान नहीं पाए हैं श्रोताओं तो कोई बात नहीं।

तो श्रोताओं, आपने अंदाजा लगा लिया ना कि आज हम किस अभिनेत्री की बात कर रही हैं। चलिए, आपकी जो थोड़ी सी क्या कहते हैं ना कि

जहां यदि आपकी याददाश्त कहीं थोड़ी सी गुम हो रही है, कहीं पे गर्मी के मारे शायद, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपको ध्यान ना आ रहा हो, तो हम आपको बता दें आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है हिंदुस्तान की मशहूर फैशन आइकन सोनम कपूर पर। और साथ में आपको ये बता दें कि आज उनका जन्मदिन है श्रोताओं, तो ढेरों शुभकामनाएं सोनम जी आपको हम सब की तरफ से जन्मदिन की। आप जहां भी रहें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खूब खुश रहें, मुस्कुराती रहें, गुदगुदाती रहें और हमें ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में देती रहें जिसे देखकर हम भी आनंदित होते रहें। तो चलिए, जैसे कि हमने जिक्र किया, आपको भी बताया कि आज उनका जन्मदिन है श्रोताओं, सोनम कपूर जी का जन्म आज के दिन यानी कि 9 जून को सन 1985 को चेंबूर, जो कि मुंबई में स्थित है, वहां हुआ था। और उनके पिताजी, हाँ जी हाँ, आप जान गए होंगे, उनके पिता जाने माने अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर हैं, जो अनिल कपूर फिल्म्स कंपनी के संस्थापक भी हैं। माँ सुनीता कपूर एक पूर्व मॉडल और डिजाइनर हैं। उनके परिवार में और जानकारी अगर हम आपको देना चाहें, बताना चाहें, तो आपको बता दें श्रोताओं कि उनके दो छोटे भाई बहन भी हैं जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनकी बहन रिया फिल्म निर्माता हैं और भाई हर्षवर्धन भी, वो भी इसी क्षेत्र में अपना करियर जो है उसको बना रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो परिवार के अन्य सदस्य भी हिंदी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि फिल्म निर्माता बोनी कपूर, अभिनेत्री श्रीदेवी, संजय कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर आदि सभी जो हैं, हम ये कह सकते हैं इनका जो पूरा परिवार है ना, पूरा बस हिंदी फिल्मों का एक मसाला सा है, एक पूरा एक उनका परिवार ऐसा परिवार है जो फैशन आइकन के रूप में, फैशन इंडस्ट्री से, मॉडलिंग से जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, यानी कि उनके रगों में, उनकी सांस में सब जगह बस फिल्म ही फिल्म बसती है। जब सोनम जी मात्र एक महीने की थी, तभी उनका परिवार जो है वो जुहू में आके शिफ्ट हो गया, वहां पे आके रहने लगा और वहीं पर स्थित आर्य विद्या मंदिर स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। बचपन में वो बहुत ही शरारती और लापरवाह बच्ची थी, बहुत तंग किया करती थी अपने साथ के जो उनके जो मित्र होते थे ना, जो लड़के जो थे स्पेशली, वो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया भी था कि वो लड़कों के साथ बड़ा पंगा लिया करती थी, बड़ी छिड़खानी किया करती थी, बहुत शरारती थी, मगर शैतानी के साथ साथ वो खेलों में भी बड़े उत्साह से भाग लेती थी और रग्बी और बास्केटबॉल जो थे वो उनके प्रिय खेल हुआ करते थे और वो बहुत अच्छा खेलती भी थी। बात हो गई पढ़ाई की, बात हो गई खेलकूद की, आपको एक और बात यहां पे बता दें कि उन्होंने कथक, शास्त्रीय संगीत और लैटिन नृत्य का प्रशिक्षण भी ले रखा है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर पर। जिसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, इस मधुर गीत को सुनने से पहले उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में, उनकी पढ़ाई खेलकूद के बारे में, उसी को श्रोताओं आगे जारी रखते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिला लिया और बाद में वह मुंबई विश्वविद्यालय के पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में उन्होंने दाखिला लिया और शिक्षा हासिल की। जहां तक फिल्मी दुनिया का सवाल है तो फिल्मी दुनिया में उनकी शुरुआत बतौर अभिनेत्री नहीं, एक सहायक निर्देशक के रूप में हुई। जी हाँ, उन्होंने सबसे पहले फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के साथ वर्ष 2005 में आई उनकी फिल्म ब्लैक में एक सहायक निर्देशक के रूप में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और यहीं से एक सहायक निर्देशक के रूप में कार्य करते करते उन्हें अभिनय की तरफ जो है एक अलग सा लगाव हो गया, रुझान हो गया और यही जो प्यार है, लगाव जो उनका जो लगाव था अभिनय की तरफ, वो उन्हें खींच लाया अभिनय की दुनिया में। और वर्ष 2007 में अभिनय की शुरुआत भी उन्होंने संजय लीला भंसाली की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सावरिया से की, जिसका मधुर गीत अभी आपने सुना। इस फिल्म के लिए उन्हें सुपरस्टार ऑफ टुमारो यानी कि फीमेल के लिए स्टारडस्ट पुरस्कार दिया गया।

उन्होंने पहली व्यावसायिक सफलता रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज जो वर्ष 2010 में आई थी उससे मिली। फिर क्या था, बस सफलता और असफलता का दौर चलता रहा, क्योंकि जब इंसान काम करता है, बाहर निकलता है, काम करता है कि तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सफलता के पायदान पर चढ़ता ही चला जाए, यानी कि हर फिल्में जो है वो सफल हो जाएं, असफल भी होती हैं, मगर महत्वपूर्ण

उन्होंने किया। वर्ष 2013 में बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म रांझना ने उनके करियर को बदल दिया। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों की बात की जाए तो भाग मिल्खा भाग, जो कि वर्ष 2013 में आई थी, जली सिक्स, संजू, प्रेम रतन, धन पायो आदि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं श्रोताओं, जिनमें उन्होंने अपनी दमदार भूमिका का परिचय दिया।

हिंदी फिल्मों की जो ये चमकती हुई रोशन दुनिया है उससे थोड़ी दूरी बना ली है, मगर वो कई समाज सेवी संस्थाओं जो कि स्तन कैंसर से जुड़ी हुई हैं व एलजीबीटी अधिकारों के प्रति जो जागरूकता बढ़ाने का काम करती हैं, वो अपना पूरा सहयोग उन्हें देती हैं। साथ ही वे कॉलगेट, इलेक्ट्रोलक्स, लक्स, मॉन्ट ब्लैंक, ओपो मोबाइल और सिग्नेचर जैसे ब्रांडों का समर्थन करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक निर्माता लॉरियल की भारतीय राजदूत भी हैं, यानी कि सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हैं, कार्य भी करती हैं और राजदूत भी हैं, और मॉडलिंग की दुनिया में फैशन आइकन के रूप में भी वो अपना जो वर्चस्व है उसे स्थापित कर चुकी हैं, एक अभिनेत्री के रूप में वो कार्य कर चुकी हैं, फिल्म निर्माता के क्षेत्र में एक सहायक निर्देशक के रूप में भी वो कार्य कर चुकी हैं। बाप रे बाप, कितनी सारी उल्लेखनीय काम जो हैं वो सोनम जी एक छोटी सी उम्र में कर चुकी हैं। और जहाँ तक हिंदी फिल्मों की बात है, उनके काम की बात है, तो वर्ष 2016 में आई बायोपिक थ्रिलर नीरजा में नीरजा भनोट के मजबूत किरदार को उन्होंने जिस प्रकार से पर्दे पर निभाया, उसे दर्शाया, उसे जीवंत किया, उससे उन्होंने लोगों का प्यार पूरी तरह से पा लिया। इतना प्यार, इतनी प्रशंसा, इतना मान सम्मान उन्हें इस किरदार को निभाने से मिला, क्योंकि हम जब भी कोई बायोपिक करते हैं जो किसी के जीवन पर आधारित होती है, एक सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, तो बिल्कुल उसमें डूब जाना पड़ता है, उस किरदार में डूब जाना पड़ता है, इस प्रकार से उस किरदार को अभिनीत करना पड़ता है, पर्दे पर दिखाना पड़ता है, ऐसा लगे लोगों को कि वो कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो सच्ची घटना देख रहे हैं, एक एकदम सच्चा स्वरूप देख रहे हैं। और इसी प्रकार का कार्य सोनम जी ने उस फिल्म में किया और उनके कार्य को सराहने के लिए, उन्हें मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें कि श्रेणी थी विशेष उल्लेख और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के लिए। साथ ही उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। श्रोताओं, जब बात हम इस फिल्म की कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष फिल्म उनकी जीवन की रही है, तो आइए सुनते हैं उसी फिल्म का ये मधुर गीत।

कार्यक्रम आज के कलाकार में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सोनम कपूर पर। निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने व्यवसायी आनंद आहूजा से विवाह किया और इस विवाह से उनके दो प्यारे प्यारे बेटे भी हैं और सोनम जी अब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं अपने परिवार की तरफ और अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी तरह अच्छी तरह से निभाएं, इसके लिए उन्होंने अभी फिलहाल

जी हाँ श्रोताओं, जीते हैं चल, हर दिन ऐसे जिए, ये सोच के जिए कि शायद ये कहीं हमारी जिंदगी का आखिरी दिन ना हो। यदि हम ये सोच कर अपने कदम उठाते हैं ना, तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और बहुत सारी कोशिशें जो हैं वो सोनम जी ने की, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो फिल्में हैं, वो उनकी झोली में हैं श्रोताओं। वहीं आप चलते चलते आपको एक और छोटी सी जानकारी दे दूँ, निर्जा फिल्म भी तो एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया, बड़ी अच्छी फिल्म जो है उनकी थी। इसके बाद वर्ष 2018 में आई महिला मित्रता फिल्म वीरे दी वेडिंग में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई थी और दोनों ही फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में शामिल हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई अभिनेत्री अपने दम पर किसी फिल्म को आगे लेकर जाती है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाती है। बातें बहुत सी हैं श्रोताओं, उनके बारे में हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, गीत भी बहुत से हैं, मगर क्या करें, समय की पाबंदी है और समय बलवान है और समय हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को समाप्त कीजिए क्योंकि दूसरे कार्यक्रम का समय शुरू होने वाला है। ये शुरू हो चुका है, धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दीजिए हमें इजाजत कार्यक्रम आज के कलाकार को यहीं पर संपन्न करने की। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित था मधुर मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, दिन के 11:31 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है और स्वागत करना भी चाहिए। और धीरे धीरे हम स्वागत करेंगे बहुत सारी और भी चीज़ों का, मगर सबसे पहले भाई बढ़ती हुई जो ये गर्मी है उसका हमने जो हाथ फैला के इतने अच्छे से स्वागत किया है, इसके लिए हम सबको पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। हम सब यही कहते हैं कि अरे आज बहुत गर्मी है, आज कितनी गर्मी है, आज तो कल से भी ज़्यादा गर्मी है, अरे भाई ऐसी गर्मी तो कभी पड़ी ही नहीं है, जल्दी जल्दी सुबह उठो, सारे काम करो, जल्दी जल्दी अपने आप को दरवाज़ों के अंदर अपने घर में बंद कर लो, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, पंखे चलाओ। अरे भाई इतनी घबराहट जो है, इतनी हड़बड़ाहट किस लिए है, गर्मी है, मौसम है, मौसम अपना रंग तो दिखाएगा ही। और इस रंग

को दिखाने में कहीं ना कहीं नहीं हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर आपसे बात भी करेंगे, बढ़ती गर्मी हम सबकी जिम्मेदारी। भाई, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ हो ही रही है। हर वर्ष जब जो नया वर्ष आता है वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ के ही जाता है। हर दिन जो है वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी के। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? धरती का तापमान इतना क्यों बढ़ता चला जा रहा है? सबसे पहले हम इस बात पे जिक्र करेंगे कि धरती का तापमान किस प्रकार से बढ़ता है, क्यों बढ़ रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और साथ ही हम ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं, हमें उठाने चाहिए, जिससे कि हम ये बढ़ती हुई जो ये गर्मी है इसको थोड़ा सा शांत कर सके। तो सबसे पहले सुनाओ, आइए जानते हैं ये जो धरती का तापमान जो बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग जो है उसे भी एक नया रूप दे सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस का प्रभाव। आप जानते हैं, सूर्य की किरणें जब दिन में पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी की सतह जो है वो उसे सोख लेती है, लेकिन रात में ये ऊष्मा जो है, ये जो गर्मी जो है, ये वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। होना तो ऐसा ही चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। मगर वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैस हो गई, ये इस ऊष्मा को रोक लेती हैं, और इसके रुकने से पृथ्वी की सतह गर्म होती जाती है। और दिनों दिन ये जो प्रक्रिया है ये बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है, वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी मानव जीवन के लिए बहुत ठंडी हो सकती है। हालांकि वायुमंडल में इसकी जो प्रतिशत है वो मात्र 0.1% से भी कम मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो उपस्थित है, फिर भी ये पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक तापमान पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ने का श्रोताओं एक कारण ये है कि गर्म हवा अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है, और जलवाष्प स्वयं एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है उसको और बढ़ाती जाती है। और जब ये प्रभाव बढ़ता है तो धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य और एक ही कारण है, वो है पेड़ों की कटाई, जिससे दिनों दिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जिस हरियाली से हम दूर भाग रहे हैं, जिस प्रकृति से हम दूर भाग रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, हमने ऊंची ऊंची इमारतें बना ली हैं, हमने ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर लिए हैं, ब्रिज बना लिए हैं, हमने सारे प्राकृतिक संसाधन जुटा लिए हैं अपने ऐशो आराम के, मगर हमने बहुत बड़ी कीमत जो है उसकी चुकाई है, और इसका खामियाजा है जो हम भोग रहे हैं और हम भोगेंगे यदि हम आज स्वयं कुछ ऐसे कदम ना उठाएं कि ये जो प्रकृति जो कि हमसे नाराज हो चुकी है, जिसे हम भुला चुके हैं, वो फिर वापस हमें अपनी कली से लगा ले। ये सब संभव होगा यदि हम और आप आज ही कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं। सिर्फ कहने से, कि सिर्फ सुनने से, या कोई दिवस मना लेने से, या कोई आयोजन करने लेने से कुछ नहीं होगा। अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक ठोस कदम उठाने की, आगे बढ़ने की। वरना जो ये सुहाना मौसम होता था, रिमझिम बारिश हुआ करती थी, ये दिनों दिन आपने अनुभव भी किया होगा, जब हम और आप छोटे थे तब कहाँ इतनी गर्मी हुआ करती थी, चारों ओर हरियाली हुआ करती थी, गर्मी का मौसम हर मौसम हुआ करता था, क्योंकि

सबका अपना एक तय समय है, समय सीमा है। बरसात भी आती थी और बरसात का मौसम कितना सुहाना लगता था, दिनों दिन कितने दिनों तक लगातार बारिश होती रहती थी। मगर अब हम इन सब चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, हम सुहाने मौसम के लिए तरस रहे हैं, हम तरस रहे हैं रिमझिम बारिश में भीगने के लिए।

भीगे भीगे मौसम का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं श्रोताओं, तो हमें अपने भविष्य को बदलने के लिए, उसे संवारने के लिए वर्तमान को बचाना पड़ेगा। आपको यहां पे छोटी सी बात बता दूं श्रोताओं, धरती समझौते नहीं करती, वो सिर्फ संकेत भेजती है। पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ता हुआ समुद्री जल स्तर, दिनों दिन तापमान में होती हुई वृद्धि, बारिश का कम होना, वनों में आग लग जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं सूखा पड़ जाना, ये सब संकेत हैं कि हमारा और आपका भविष्य

क्या होगा, क्या होने वाला है। यहाँ एक अपनी एक छोटी सी एक कहानी याद आ रही है, हालांकि कहानी नहीं सुनाऊंगी, बस उसका जो एक कहते ना मर्म है वो आपसे साझा करना चाहूंगी कि भविष्य में आसमान से आग बरसेगी और सब खत्म हो जाएगा। पहले के लोग ये कहा करते थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था, पता था कि मानव जो है, आज का जो मानव है, इस युग का जो मानव है, जो अब इस सदी में आ गया है, वो सिर्फ भोग और विलासिता की जिंदगी चाहता है, वो प्रकृति से अपने आप को दूर करना चाहता है, न जाने वो कौन से सुख के पीछे भाग रहा है, और इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ेगा और उठा रहा भी है। 1800 के दशक में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर चिंताजनक है। औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति ने हालांकि हमारी जिंदगी को बहुत आसान, सुगम, सरल बनाया है, मगर हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा प्रश्न भी है, और इसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार भी है। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां ज्ञान विज्ञान हमें हमारी जिंदगी को आसान भी बनाते हैं, वहीं हम अपने कर्मों से, कार्यों से अपने जीवन को सुगम सरल जहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि इसका विपरीत प्रभाव भी हम पर ना पड़े। मगर यही कोशिश जो है, यही कार्य हम नहीं कर रहे हैं। 1850 से लेकर अब तक पृथ्वी के तापमान में प्रति दशक औसतन 0.11 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0.06 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, और 1982 के बाद से तापमान में वृद्धि की दर 3 गुना से भी अधिक तेज है, और प्रति दशक ये 0.36 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से बढ़ रही है। समस्त पृथ्वी, समस्त विश्व जो है वो प्रचंड लू की आगोश में है, प्रचंड गर्मी की आगोश में है। 22 अप्रैल सन 2026 को एक नया अप्रिय कीर्तिमान स्थापित हुआ है। दुनिया के 50 सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में भारत भी शामिल है। मई में विभिन्न स्थानों पर तापमान जो है वो 47 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज हुआ। तो ये सब बातें कहने की, करने की अब शायद समय नहीं है। हमें पर्यावरण की तरफ, अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, हम अपने भविष्य को यदि बचाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और औद्योगिकीकरण से थोड़ा अपने आप को समेटना पड़ेगा, अपने आप को खींचना पड़ेगा, और प्रकृति की ओर हमें अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा। उससे लगाव, उससे प्यार यदि हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और आंकड़े बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार लू के बढ़ते दिनों के कारण आने वाले समय में भारत में धान का जो उत्पादन है वो 40% तक घट सकता है। हमारे देश में 70% कैलोरी तो चावल से ही प्राप्त होती है, और इसका परिणाम हम सब पर पड़ेगा। गेहूं का उत्पादन भी गिरने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। जलवायु परिवर्तन से जहां ये समस्याएं बढ़ रही हैं, वहीं पे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव जिंदगी के लिए, सेहत के लिए भी बहुत दुष्परिणाम लेकर के आएगा, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन यापन, जिस प्रकार की बदली हुई जीवन शैली हम लोग जीने लगे हैं, हमारी जो, हमारा जो शरीर है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका खामियाजा हम दिनों दिन भुगत भी रहे हैं। आज हम एक कह सकते हैं कि भौतिकवादी युग में जो है वो जी रहे हैं और जीना चाहते हैं, जहां हमने प्रकृति से दूरी बना ली है, जहां हमने प्रकृति के जो हमारे 5 जो तत्व, मित्र तत्व हम जिन्हें कहते हैं, उनसे दूरी बना ली है, उनसे अपने आप को दूर कर लिया है। उसी की वजह से आज ये जो दिनों दिन बढ़ती हुई गर्मी है, जिसका जिक्र हम रोज करते हैं, वो हमें अपनी आगोश में लेती जा रही है। इन 5 तत्वों का हम जिक्र कर लें, आपको बताते चले श्रोताओं, वो है मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, जिनका दोहन जो है, जिनको प्रदूषण के द्वारा हमने बिल्कुल तरह न

रास्ता अनुभूत कर दिया है। हमने अपनी भोग विलासिता के हमने जीवन शैली को इस प्रकार बना लिया है कि हम पैदल चलना ही नहीं चाहते, हम इलेक्ट्रिक हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे निकलता हुआ जो धुआं है, जहरीला धुआं, वो जहां वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है, आकाश को प्रदूषित कर रहा है, उससे हमारा जीवन यापन जो है वो बहुत कष्टकारी होता जा रहा है। अच्छी हमें पैदावार चाहिए तो हम कीटनाशकों का बेहिसाब उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो दिनों दिन घटती चली जा रही है। जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटती जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं कीटनाशकों का जरूर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, और जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसी मिट्टी में हम वो सब्जियां और फल फूल ही सारे पेड़ उगाते हैं, और ये जो मिट्टी से ही सब तत्व जो है वो पेड़ पौधों में जाते हैं, फलों में जाते हैं, सब्जियों में जाते हैं, और उन्हीं का सेवन हम भर भर के पेट भर भर के करते हैं। तो भाई जब कीटनाशकों का सेवन करेंगे तो सेहत और स्वास्थ्य की बात हम कहां कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हर चीज जो है वो एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इन सब की जिम्मेदारी, ये जो एक चक्र है ना, इसकी चक्र अच्छे से चलता रहे, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी है हम पे और आप पे। तो हमें अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, अपनी जीवन शैली की जो जिस प्रकार की जीवन शैली हमने बना रखी है उसे बदलना पड़ेगा। भोग विलासिता की जिंदगी से हमें अपने आप को दूर निकालना पड़ेगा, जो समस्याएं हैं उनका निदान करना पड़ेगा, पर्यावरण प्रकृति की तरफ अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, और प्रकृति ने जो हमें जितने भी तत्व दिए हैं, जो चीजें दी हैं, उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम मान सम्मान करना किसी का नहीं सीखेंगे, हम और आप यूं ही अपमानित होते रहेंगे। देखिए, अपमानित होने का अर्थ अलग अलग होता है। अब झुलसती हुई गर्मी में हमें घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने कामों को करना पड़ रहा है, हम तो चले तब भी एक कमरे में बंद हैं, भगवान का शुक्र है कि हमें ठंडी हवा भी मिल रही है, मगर सोचिए उन लोगों के बारे में जो दिन रात जो है वो सिर्फ अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उन्हें दिन रात बाहर काम करना पड़ता है। ये जलवायु परिवर्तन गरीब व्यक्ति के लिए, जो भौतिक वस्तुओं को खरीद नहीं सकते, उनका जो खर्चा है उसे वहन नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत दर्द लेकर आ रही है। और हमारी जो कार्य हैं, हमारे और आपके जो कार्य हैं, इनसे दिनों दिन जिस प्रकार का खामियाजा हम भुगत रहे हैं, जैसे कि पिघलते हुए हिमखंड हैं, प्रतिकूल मौसम है, जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है, जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो रहा है, दिनों दिन समाप्त होती जा रही है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, उसका विपरीत प्रभाव जो पड़ रहा है, ये सब जो है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जिसका हमने शुरुआत में भी जिक्र किया कि सबसे ज्यादा घातक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका उत्सर्जन, जिसका जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं उनसे जो गैसें निकलती हैं, उन्हीं से ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये जो प्रभाव है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आजकल हर घर में रेफ्रिजरेटर और एसी तो सामान्य है, और आप जानते हैं कि जितना उपयोग इनका बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा ही प्रतिकूल प्रभाव जो है वो ओजोन परत पर पड़ता चला जा रहा है। ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी को ढाके हुए है, सूर्य की विषैली किरणों को अपने अंदर सोख लेती है ताकि पृथ्वी तक उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव ना पड़ पाए, वो पतली होती चली जा रही है, और हम अपने आराम के लिए दिनों दिन इनका उपयोग जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। आधुनिक युग में हम तो पैदल चलना भूल ही गए हैं, कहीं जरा सा काम होता है दो मिनट भी, दो क्या 100-200 मीटर के लिए भी हम पैदल नहीं चल पाते। औद्योगिकीकरण बढ़ चुका है, और इन सब के उपाय सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ है। और यदि आप अपने जीवन को, अपने इस जीवन को, सुहाने सफर को और सुहाना बनाना चाहते हैं श्रोताओं, तो अपने जीवन

0: हसी।
1: सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, ये वाकई यदि हम और आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो हमें कदम उठाने होंगे ऐसे कि वाकई में चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली हो, हमारा हर दिन, हमारी हर दोपहर, हर शाम, जीवन की हर रात और जीवन की दूसरी सुबह जो है वो हरी भरी ही हो। हमने बात की श्रोताओं की कैसे बढ़ती हुई जो गर्मी है उसके लिए मानव जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार हैं, मगर इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। चलिए चलते चलते इस बात का जिक्र भी हम कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कदम हैं जो हमें और आपके उठाने चाहिए जिससे कि हम बढ़ता हुआ ये जो तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये विषैला, जो ये गैसों का जो प्रभाव है जो दिनों दिन वायुमंडल को प्रदूषित करता जा रहा है, उसे हम कम कर सकें। तो करिए कुछ ऐसे काम जो बनाए सारे बिगड़े काम। तो साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और भाई यदि हम और आप साइकिल चलाने लग जाएंगे, आपको एक बात बताऊं, तो ये जो

पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, है ना, सारी समस्याएं जो हैं वो छूमंतर हो जाएंगी। सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो है साइकिलिंग। जी हाँ, आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, विशेषज्ञ से बात कीजिए, वो आपको यही सलाह देगा। और आपने देखा भी होगा पुराने जमाने जो जो लोग थे, आपके दादा परदादा, वो लोग भी देखिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे। और बहुत से ऐसे लोगों को तो मैं खुद जानती हूँ जो 80 वर्ष तक के हो गए हैं और वो अब भी आज भी साइकिल चला रहे हैं और ना ही उनके कहीं कोई दर्द है, ना हाथों में, ना पैरों में, ना घुटनों में। और यहाँ देखिए, यहाँ तो अभी से ही घुटनों में दर्द शुरू हो चुके हैं। तो भाई, शारीरिक क्षमता जो है उसको मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने लगें। और साथ ही साथ यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो जल का संरक्षण करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी मॉनसून का समय आने वाला है, धीरे धीरे मॉनसून आगे बढ़ रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ऐसे उपकरणों का उपयोग कीजिए, इस्तेमाल करिए, लगवाइए, जिससे कि आप पानी की वर्षा की एक एक बूंद को संचित कर सके, उसको सजो के रख सके। बहुत जरूरी है चारों तरफ हरियाली लगाएं, पेड़ लगाएं। यदि आपके घर में कम जगह है तो छोटे छोटे गमलों में आप पौधे लगा सकते हैं। और फिर देखना, जब आप सुबह उठेंगे ना, खिलखिलाते हुए हरे भरे जब वो पौधे देखेंगे, रंग बिरंगे फूल देखेंगे, तो आपका जीवन जो है, आपकी जो वो दिन है, कितना खुशनुमा हो जाएगा। आपकी दिनचर्या की जो शुरुआत है वो कितनी रंगीन और सुहानी होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कुछ कीजिए ऐसे कदम, कारगर कदम, जो हमारे और आपके ही जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र, पूरे इस धरा के लिए परिवर्तनशील हो। अंदाजा लगाइए, जब हम अभी बाहर निकलते हैं तो हम पेड़ों की छांव को ढूंढते हैं और जहां हमें पेड़ दिख जाता है हम वहीं रुकने की कोशिश करते हैं। तो पेड़ हमने और आपने तो नहीं लगाए, लगाए हमारे पूर्वजों ने। तो धन्यवाद अदा कीजिए ऐसे लोगों का जो कुछ ऐसे काम कर गए जो आज हमारे और आपके लिए अमृत तुल्य है। सबसे बड़ा पुण्य है ऐसे काम करना जो औरों के जीवन को शांति दे, सुख दे। तो आज ही संकल्प कीजिए कि जो ये गर्मी हम सबके कारण से, हमारे कर्मों से, जो ये दिनों दिन जो ये जलवायु परिवर्तन का जो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, उसे हम रोकने की कोशिश करें, कुछ ऐसे कदम उठाएं, कार्य करें कि हमारा जीवन जो है वो फिर हरा भरा हो जाए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ श्रोताओं, हमें दीजिए इजाजत कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को यहीं पर संपन्न करने की। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दिन के 12 बज चुके हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं,
3: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
3: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगा

0: खाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है।
0: जी,
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
0: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
0: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
0: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
0: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
0: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
1: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
2: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
2: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है

0: audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और
4: हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया,

0: है, सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं।
3: पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
4: हाँ,

0: हरगोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो,

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा
1: अच्छा हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों

0: देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव

0: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
1: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माजी के पास जा पहुंचा।
2: माजी, अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे,
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माजी, अब पैर लागू।
0: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
2: अच्छा, राम राम।
3: राम राम।
2: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवार न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई

सुजैन किशोर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला तराना। बोल सईद कादरी और आसिफ अली बेग की थी, धुन बनाई थी प्रीतम ने और फिल्म का नाम था आवारापन। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना राहत फतेह अली खान के स्वर में, धुन तनिष्क बागची की, फिल्म का नाम है रेड।

कार्यक्रम का अगला तराना हमने लिया है फिल्म रावण से। स्वर शफाकत अमानत अली का, बोल कुमार के दिए हुए हैं, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

शकलाका बूम बूम। आइए सुनते हैं फिल्म कतराना शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में। शब्दश्री समीर की है, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया।

0: नए तरानों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

तुलसी कुमार और राहत फतेह अली खान की सुर में भी आपने सुना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का तराना। इस तराने के बोल गीत इशाद कामिल ने धुन बनाई थी प्रीतम ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम तराना रूप कुमार राठौर और जय श्री शिवराम की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत संजीव दर्शन का दिया हुआ और फिल्म का नाम है कितनी दूर कितने पास।

कितनी दूर कितनी पास, इस फिल्म का तराना अभी आपने सुना रूप कुमार राठौर और जय श्री शिवराम की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत संजीव दर्शन का। और इस तराने के साथ ही नए तरानों का सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ

0: नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said that Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा, सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी, प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियसना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमात मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज पर CCTV की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त के लिए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी कयादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले जिक्र तरक्की हुई है।

0: आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके मां और बच्चे की शरेआमवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खिदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी एनटीए ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नष्ट किया जाएगा।
2: आकाशवाणी के
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही सभी बहनों को उनकी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार। बहनों, भारतीय संस्कृति अपनी विभिन्न विशेषताओं के कारण विश्व पटल पर अनूठी पहचान लिए हुए है और इन्हीं विशेषताओं में से एक है यहाँ का आदिवासी समुदाय, जिसे जनजाति समुदाय भी कहते हैं। ये जनजाति समुदाय अपनी अनूठी जीवन शैली, प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव, लोक कलाओं और परंपराओं के माध्यम से भारतीय सभ्यता की नींव को मजबूत करते हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज, महारानी राज टुंडू जाना, हमारा देश हमारा राज, ब्रिटिश शासन समाप्त हो। बहनों, यह प्रसिद्ध नारा याद दिलाता है जनजाति गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की। धरती आबा के नाम से जाने वाले बिरसा मुंडा को आदिवासी लोगों के बीच एक देवता समान पूजा जाता है। 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिताहू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कुर्मी मुंडा था। बिरसा ने चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल से कुछ समय शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने आदिवासियों के शोषण को करीब से महसूस किया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नई जमींदारी प्रथा और वन कानून ने आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया था, जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने उल गुलान यानी विद्रोह का बिगुल फूंका। बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई और 3 फरवरी सन 1900 को अंग्रेजों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया और रांची की जेल में डाल दिया। 9 जून सन 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में

रहस्यमयी परिस्थितियों में रांची जेल में उनका निधन हो गया। बहनों, बिरसा मुंडा के सम्मान और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है।

0: में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: बहनों, आजकल बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, यानी कि बच्चों की मौज मस्ती का समय। लेकिन ये समय यूं ही व्यर्थ ना चला जाए, इस बात का ध्यान हमें रखना है और अपने बच्चों की रचनात्मकता को निखारने का इससे बेहतरीन समय हमें नहीं मिल सकता। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये वार्ता, गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग। वार्ताकार हैं अनुराधा तुली।
2: बहनों, आप हम सब जहां एक गृहिणी हैं, वहां माँ भी हैं। बच्चों का लालन पालन एक चुनौती से कम नहीं। छुट्टियां शुरू होते ही हमारी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। बहनों, जहां गर्मी की छुट्टी का बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं, वही ये छुट्टियां हम बहनों के लिए धैर्य की परीक्षा से कम नहीं होती। सारा दिन बच्चों की धमा चौंकड़ी और खाने पीने की नई नई फरमाइशें। ऐसे में बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में जितना व्यस्त रखा जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए इन गर्मी की छुट्टियों में उन्हें उनकी रुचि के अनुसार हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवाई जा सकती हैं। तब वे व्यस्त भी रहेंगे और उनमें रचनात्मकता का विकास भी होगा। बहनों, ज्यादातर बच्चे गर्मी की छुट्टियों में सारा समय टीवी पर कार्टून देखकर या फिर फोन व लैपटॉप पर वीडियो गेम्स खेलकर बिताते हैं। खासकर 4 से 14 वर्ष के बच्चों में वीडियो गेम्स का क्रेज इस कदर पाया गया है कि उन्हें घर से बाहर खुले मैदान व बगीचे में खेलना बेहद कष्टदायी लगता है। लगातार टीवी, कंप्यूटर व फोन पर गेम खेलकर समय बिताने से बच्चा न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो सकता है। बच्चे का संपूर्ण विकास उसकी शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता पर ही निर्भर करता है। जब बच्चे शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर सक्रिय रहते हैं, तब वे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस प्रकार रोचक तरीके से बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान उनकी जानकारी बढ़ाने वाले खेल खिलौनों में व्यस्त रखती हैं और उसे रचनात्मक तरीके से कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। बहनों, छुट्टियों में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे का पढ़ाई से संपर्क न छूटने पाए। पढ़ाई को दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं। उसे पास की किसी लाइब्रेरी में लेकर जाएं एवं रुचि अनुसार किताबों का चयन कर उसकी क्षमता को विकसित करें। यदि आपके बच्चे को टीवी का अधिक शौक है, उसे विभिन्न चैनलों पर दिखाए जाने वाले एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाएं। बच्चों को अंग्रेजी कार्टून आदि देखने के लिए भी प्रेरित करें, जिससे अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ भी मजबूत होगी। बहनों, इसके साथ साथ बच्चों के दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी डांस पार्टी का इंतजाम करें। इस पार्टी में आप शरबत और कुछ स्नैक्स आदि भी रख सकती हैं। बच्चों की पसंद का गाना बजाएं और उन्हें डांस पार्टी का मजा लेने दें। इससे मौज मस्ती भी हो जाएगी और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। बहनों, गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर बच्चे किताब को हाथ नहीं लगाना चाहते। वे मानकर चलते हैं कि छुट्टियों में भला पढ़ाई का क्या काम। ऐसे में आप कंप्यूटर पर अलग अलग तरीके से नई नई चीजें सिखाकर बच्चे की पढ़ाई का प्रभाव बनाए रख सकती हैं, जैसे इंटरनेट पर मैथमेटिकल पजल्स, साइंस ट्यूटोरियल इत्यादि। यदि आप गार्डन में हैं, तो फूलों, पेड़ों की संरचना, उनके भागों आदि के बारे में बताएं। किचन में हैं, तो उसे खाने की अलग अलग वस्तुओं से शरीर को मिलने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में जानकारी दें और किस खाद्य पदार्थ के सेवन से क्या लाभ मिलता है यह भी बताएं। हम पानी को कैसे प्राप्त करते हैं, उसका चक्र कैसा होता है आदि जानकारी उसे बातों ही बातों में दें। अगर आप रात में कहीं बाहर हैं, तो आकाश गंगा, तारों तथा पृथ्वी के चक्र आदि के बारे में बच्चों को बताएं। यही सब चीजें जब वह अपने पाठ्यक्रम में पाएगा, तो उस विषय को आसानी से समझ सकेगा और स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। बहनों, छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों को कहानियां लिखने की जिम्मेदारी दें और अच्छी कहानी लिखने पर इनाम देने का वादा भी करें। इस तरह एक तरफ तो बच्चों की लेखन शैली व भाषा में सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ उसमें भावनाओं को व्यक्त करने की कला भी विकसित होगी। कहानियों के जरिए कई बार बच्चों के मन का डर या कोई ऐसी कमजोरी सामने आ सकती है और आप समय रहते ही उसका समाधान भी कर सकती हैं। छुट्टियों में बच्चों को किसी नजदीकी पार्क या गार्डन में जरूर लेकर जाएं। पार्क में उन्हें मिट्टी, बॉल व अन्य झूलों से खेलने दें। यदि बच्चा सुबह जाने से कतराए, तो शाम में उसे पार्क लेकर जरूर जाएं। उन्हें खेलने के लिए रस्सी, हुला हुप व अन्य आउटडोर खेल दें। साइकिलिंग व तैराकी आदि को भी उसकी दिनचर्या में शामिल करें। बहनों, बागवानी से हर किसी को खुशी मिलती है।

0: इसके माध्यम से आप बच्चे को विज्ञान व प्रकृति से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। जब बच्चा रोज अपने लगाए हुए पौधों को बड़ा होता देखेगा तो वह जीवन के बहुत अहम सबक भी खुद ही सीख जाएगा। बच्चे के हाथ से कुछ फलदार पौधे भी लगवाएं ताकि जब उसमें फल आए तो वह अपने प्रयास के परिणाम को अनुभव कर सके। धीरे धीरे बागवानी उसका शौक बन जाएगा। वह पर्यावरण को हरा भरा रखने का महत्व भी समझ लेगा। बहनों, यदि छुट्टियों में आपको कहीं बाहर घूमने जाने की योजना है तो उस दौरान बच्चे को एक मजेदार एक्टिविटी पूरा करने की जिम्मेदारी दें। बच्चों को सफर के दौरान एक पिक्चर बुक बनाने के लिए कहें। इस तरह घूमते वक्त बच्चा उन लम्हों को कैमरे में कैद करने में व्यस्त रहेगा और लौटकर घर आने के बाद वह एक सप्ताह तक अपने ट्रैवल की यादों को संजोने में व्यस्त रहेगा। रोजमर्रा के कामों में थोड़ी थोड़ी मौज मस्ती को शामिल करने से आप अपने बच्चे की छुट्टी को मजेदार बना सकती हैं। इसके लिए चलते फिरते सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जा सकते हैं। अंताक्षरी भी एक अच्छा विकल्प है। ऐसा करने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बहनों, बच्चों की छुट्टियों को उन्हें जड़ों से जोड़ने के मौके के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा करने के लिए खाली वक्त में कामकाजी महिलाएं बच्चों को दादा नानी के किस्से सुना सकती हैं। अपने बचपन की किस्से कहानियां भी उन्हें रोमांचित करेंगी। इतना ही नहीं, बच्चों को इतिहास और पौराणिक कथाएं सुनाने और पढ़ने में भी व्यस्त किया जा सकता है। समर कैंप कामकाजी माओं के लिए बच्चों को व्यस्त रखने का एक अच्छा विकल्प है। बच्चे की हॉबी के मुताबिक आप बच्चे को डे केयर समर कैंप में भेज सकती हैं। पर हाँ, समर कैंप का चुनाव करते वक्त थोड़ी सी मुस्तैदी भी जरूरत है। वहाँ बच्चे की सुरक्षा को अनदेखा ना करें। समय समय पर बच्चे से कैंप की गतिविधियों के बारे में पूछना ना भूलें। बहनों, बच्चों को जिम्मेदार बनाना हर माँ की ख्वाहिश होती है। इन छुट्टियों में इस ख्वाहिश को पूरा करने की और आप कदम बढ़ा सकती हैं। बच्चों को उसकी उम्र के मुताबिक काम दीजिए और काम पूरा होने पर पुरस्कार। ऐसा करने से बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास आएगा, साथ ही वह व्यस्त भी रहेगा। बहनों, छुट्टियों में पढ़ाई लिखाई का टेंशन नहीं होता। ऐसे में अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमियों और अच्छाइयों को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। इस कार्य में स्वयं के अलावा मित्रों, गुरुजनों एवं परिवारजनों की मदद ले सकते हैं। छुट्टियों का उपयोग व्यक्तित्व विकास के लिए किया जा सकता है। छुट्टियां आपके परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने के लिए एक बढ़िया समय है। यह आपके शौक और जुनून को पूरा करने का एक मौका है। अलग अलग अवकाशों पर अलग अलग योजना बनाकर और उसमें से ज्यादातर योजनाओं को उसी अनुरूप सफल बनाना एक अच्छा विचार है। प्रतिस्पर्धा के आधुनिक युग में तो समय की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज समय गंवाने का अर्थ है प्रगति की राह में स्वयं को पीछे धकेलना। बहनों, इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग आप ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स को पूरा करने में भी कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स नॉलेज और स्किल को बढ़ाते ही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं। गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग व्यक्तित्व विकास के लिए भी किया जा सकता है। अच्छे भविष्य के लिए अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ जरूरी है। अंग्रेजी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, तो इस झिझक को तोड़ने का आसान तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना। इसके अलावा आप अपने शौक के अनुसार एरोबिक्स, स्केटिंग, भांगड़ा, संगीत, कोरियोग्राफी, मोमबत्ती बनाना, क्ले मॉडलिंग, कढ़ाई करना, फैब्रिक पेंटिंग, योग जैसे कई कोर्सेज में भाग ले सकती हैं और गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग सीखकर एवं सिखाकर कर सकती हैं।
1: बहनों, अभी आपने सुनी अनुराधा तुली की वार्ता गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग। बहनों, बच्चों से ही हमारे जीवन की बगिया महकती है, इसलिए उनसे जुड़ी हर बात भी तो मायने रखती है। तो फिर चलिए बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम का खास सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम, जिसमें आधुनिक जीवन शैली और बच्चों का स्वास्थ्य विषय पर हमने की बातचीत एक नेचुरोपैथ आचार्य कुलदीप भवानी से।
2: हमारे कार्यक्रम घर संसार में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज जिस प्रकार की जीवन शैली हम जी रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
3: बच्चों की दिनचर्या और बच्चों के आजकल हो रहे जीवन शैली के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को हम एक सही सीख नहीं दे पा रहे हैं, उन तक बेहतर स्वास्थ्य नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको प्रायोजित कर दे दिया जाता है,

0: आपको कोई प्रोडक्ट बता दिया गया तो आप अपने बच्चे को उस प्रोडक्ट को खिलाते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है तो आप अपने बच्चे तक उसको पहुंचाते हैं। लेकिन प्रकृति जिस तरीके से हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहती है, हम वैसे अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सुबह सुबह हमें अपने बच्चों को, जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो, उनका सारा दिन स्वस्थ और मैं कहूँगा कि मौज मस्ती के साथ गुजरे। बच्चे हमारे भविष्य की निधि हैं, तो बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे सिर्फ समाज के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। तो बच्चों को सबसे पहले हमें सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उनके जीवन के लिए प्रमुख चीज़ें कौन सी हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो व्यायाम की हो।
1: बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और एक स्वस्थ जीवनचर्या का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करने में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए?
0: मैं सभी माता पिताओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक प्रकृति से जोड़िए, क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है। आधुनिक युग और इस आधुनिक विज्ञान में हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन से प्रकृति के लिए जो प्रेम होना चाहिए उसे हम छीन रहे हैं उनसे। तो सभी माता पिता की एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पार्क में लेकर जाएं, पेड़ों के नाम बताएं, बताएं उन्हें कि किस प्रकार से ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बताएं उन्हें कि आपके शरीर को मजबूत करने के लिए किस तरीके से प्रकृति अपनी तैयारी करती है। सुबह आपके लिए शुद्ध प्राण वायु बनाती है, ऑक्सीजन बनाती है, और रात्रि के समय में ये कैसे अपने आप को फिर से चार्ज करती है। तो बच्चों को बड़े ही अनूठे तरीकों से मैं कहूँगा, आजकल सभी माता पिता बहुत काफ़ी पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो सभी अपने सारी युक्तियाँ भिड़ाकर अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करें, कैसे भी करके।
1: कहते हैं कि हमारा खान पान जैसा होता है वैसी ही हमारी सेहत भी होती है, तो आपके अनुसार स्वस्थ जीवन शैली और आहार में क्या संबंध है?
0: जिस चीज को खा रहे हैं, जिसके लिए आप उन्हें परमिशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो फास्ट फूड की सबसे पहले बच्चों को परिभाषा आप बताएं कि सही परिभाषा इसकी क्या है। फास्ट फूड का मतलब है कि जो भोजन जल्दी खाया जा सके। तो फास्ट फूड मैं समझता हूँ कि बर्गर, पिज्जा, मोमोज, पेस्ट्री, ये नहीं है। फास्ट फूड का मतलब होता है कि आप एक केला लीजिए, जितनी देर में आपका बर्गर बनाने वाला काट नहीं पाएगा उतनी देर में आप 2 केले खा जाएंगे। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं, जितनी देर में नूडल्स आपके कढ़ाई में जा नहीं पाएंगे उससे पहले आप एक एप्पल खा जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि फास्ट फूड जो है वो आपके फ्रूट्स हैं। तो बच्चों को फ्रूट्स खाने की सलाह दें, फलों का सेवन कराएं, बच्चों को जागरूक करें कि फास्ट फूड में और जंक फूड में अंतर क्या होता है। बच्चे जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो अपने बच्चों को आप सलाह दें कि वो जंक का मतलब गूगल पर ढूंढें और उसके बाद उसका अर्थ उन्हें पता होना चाहिए कि जंक का मतलब होता है कचरा। तो क्या हमारे बच्चों को कचरा खाना मिल रहा है जैसा कि जंक फूड? तो जंक फूड का मतलब ही होता है कि कचरा खाना, जो कि आपके शरीर को रोगी बनाने के लिए पर्याप्त है। आप इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि शारीरिक दोषों को और शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 80% यानी कि 80% आपका खान पान डिसाइड करता है। आपके खान पान के ऊपर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा और कितने आप रोगी अपने शरीर को बनाएंगे। तो इसीलिए जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसा मन वैसा तन और जैसा तन वैसा मन, क्योंकि स्वस्थ काया के भीतर ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो बच्चों के बेहतर विकास के लिए आप उन्हें एक बहुत अच्छी डाइट दें, आप उन्हें फ्रूट्स का सेवन करवाएं, फलों का सेवन करवाइए, आप उन्हें बेहतर अनाज उपलब्ध कराएं और उन्हें बताएं कि सही न्यूट्रिशन जो है वो आपके घर के भोजन में है।
1: कार्यक्रम के अंत में आप हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: कार्यक्रम घर संसार को सुन रहे सभी श्रोता और माताओं बहनों के लिए यही संदेश है कि आप अपने स्वास्थ्य के खुद जिम्मेदार हैं। आप कितने स्वस्थ रहेंगे, कितने रोगी रहेंगे, इसके लिए आपके ही किए गए काम आपकी जिंदगी में आपके सामने आने वाले हैं।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो?

0: ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: बहनों, आपने देखा होगा कि बरगद और पीपल जैसे बड़े और मजबूत वृक्ष कितनी दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। कारण है उनकी जड़ों की गहराई। जी हाँ बहनों, ये जड़ें ही तो हैं जो इन्हें दृढ़ता पूर्वक जमीन के साथ पकड़े रहती हैं। बहनों, इसी तरह जो व्यक्ति अपनी जड़ों यानी कि संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहता है, उसका ही सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बहनों, हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति की अहमियत ज़रूर बतानी है। संस्कृति का ज्ञान किताबी या उपदेशात्मक होने के बजाय अपने दैनिक जीवन, त्योहारों और सामाजिक परंपराओं का हिस्सा बनाकर दिया जाए। बहनों, यूं तो हमारे बच्चे हमारे साथ त्यौहार भी मनाते हैं, लेकिन त्योहारों को मनाने के पीछे के जो ऐतिहासिक या पौराणिक महत्व है, उसका ज्ञान भी उन्हें हमें कराना है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर पारंपरिक कपड़े, पारंपरिक व्यंजनों की खासियत भी उन्हें बताई जाए, साथ ही अपने राज्य शहर के ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, स्थानीय कला जैसे कि पेंटिंग, संगीत या नृत्य की मुख्य जानकारी भी उन्हें प्रदान कीजिए। धर्म, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को सुनाते हुए उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। बहनों, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना भी संस्कृति का ही अंग है। आज ज्यादातर बच्चे हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी में अंक और संख्याएं ना तो समझ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। इसलिए बहनों, बच्चों का अपनी मातृभाषा और अपनी क्षेत्रीय बोली में बातचीत करने को प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहनों, संस्कृति की समझ बच्चा अपने प्रारंभिक जीवन स्तर से ही लेने लगता है, जहां घर परिवार, रिश्ते, समाज, पर्व त्योहार, परंपराएं उसका शिक्षण करती हैं। बहनों, हमारे देश की संस्कृति की तो बात ही निराली है।

बहनों, अब है बारी अप टू डेट सेगमेंट की। लम्हों में बदल जाते हैं मौसम के तेवर, कुदरत की नज़ाकत भी हसीनों से कम नहीं। बहनों, कुदरत के खूबसूरत रंगों के अलावा इसके रौद्र रूप को भी मनुष्य ने अलग अलग प्रकार की आपदाओं के रूप में देखा और सहा है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली सुपर अल नीनो आकार ले रहा है, जो सन 1877 के बाद की सबसे विनाशकारी मौसम संबंधी घटना साबित हो सकती है। बहनों, इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अल नीनो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करने वाला है। बहनों, अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्र का पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जब यह तापमान वृद्धि आमतौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाती है तो इसे सुपर अल नीनो का नाम दिया जाता है। सामान्य दिनों में चलने वाली ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे गर्म पानी प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से यानी कि दक्षिण अमेरिका की ओर जमा होने लगता है। बहनों, अल नीनो के प्रभाव स्वरूप भारत में मानसून कमजोर हो सकता है, बारिश कम होने की वजह से सूखे की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि संभावित सूखे और गर्मी के खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बुवाई बीजों की उपलब्धता, जलाशयों में पानी की निगरानी के लिए आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्रालय द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सक्रिय कर दिए गए हैं। और बहनों, अब करते हैं बात हमारा स्वास्थ्य की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हमारे लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बहनों, इन्हीं में से एक होता है मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए आवश्यक है। जैसे बहनों, जब कभी बोन्स की बात होती है तो हमारे जहन में कैल्शियम और विटामिन डी का ही ख्याल आता है, जबकि साइंस कहता है कि बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए मैग्नीशियम भी बेहद ज़रूरी है। मैग्नीशियम हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ये बीपी को नियंत्रित

करता है, हार्ट का वर्कलोड कम करता है, मांसपेशियों की कमजोरी भी मैग्नीशियम की कमी होने पर महसूस होती है। बहनों, हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाले न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स जो हमारे मूड को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनकी अवस्था को भी ये रेगुलेट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, मैग्नीशियम एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, और वो कार्य है सेलुलर एनर्जी जनरेट करने वाले एटीपी प्रोडक्शन का। बहनों, नींद इंसान के दैनिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है, और नींद के चक्र को नियंत्रित करने वाले मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाने का काम भी मैग्नीशियम करता है। प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए हमें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, कद्दू के बीज, बादाम, काजू, साबुत अनाज, फलियां, डार्क चॉकलेट शामिल करने चाहिए। बहनों, अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहती हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और अब इसी के साथ हमें लेनी होगी आपसे अनुमति, कार्यक्रम घर संसार का समापन करते हुए सभी श्रोता बहनों को उनकी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पारशर का नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद गीत व भजन। गायक कलाकार हैं जुनाकी भट्टाचार्य।

0: Before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।

0: भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया।

0: IN और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनीमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान

0: दरमियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क

परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा, कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से मिश्र तिलक कामोत में ठुमरी गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से मिश्रित लक कामोद में ठुमरी गायन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना से राग भैरवी में ठुमरी गायन।

गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्म से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। गीतकार थे पंडित भरत व्यास, संगीतकार वसंत देसाई और फिल्म का नाम था दो आंखें बारह हाथ।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्दशना मजरू सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है SG बर्मन ने और फिल्म का नाम है 9-2।

0: गजल फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। शब्दशना साहिर की थी और धुन बनाई थी मदन मोहन ने, और इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, संवादक गरिमा शाक्य, प्रस्तुतकर्ता अनेंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद एक ऐसा सुरीला सफर जहां हर गीत अपने साथ कोई याद, कोई एहसास और दिल की कोई अनकही बात लेकर आता है। कभी कोई धुन पुराने दिनों की खुशबू बनकर मन में उतर जाती है, तो कभी कोई बोल आज के पल को और भी खूबसूरत बना देते हैं। संगीत की इसी नर्म रोशनी में आज हम सजाने जा रहे हैं गीतों की एक प्यारी सी महफिल। तो आइए, दिल के दरवाजे खोलिए, यादों को मुस्कुराने दीजिए और मेरे साथ चलिए सुरों के इस खास सफर पर, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। और अब बात करते हैं अपने पहले कॉलर से।
2: हेलो।
1: हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: कौन बात कर रहे हैं?
2: जी, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य कुमार।
3: आदित्य, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी, मैं बिजलीगढ़ से बात कर रहा हूँ मैडम।
3: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
2: जी, मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ मैडम।
3: अच्छा, तो आप कहाँ पे पढ़ाते हैं? किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर है?
2: इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ मैडम।
3: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या क्या शौक रखते हैं?
2: मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है।
3: अच्छा।
2: इसके अलावा गाने सुनना बहुत पसंद है। और आपका जो आकाशवाणी आगरा है वो मैं रोज सुनता हूँ, इससे ही मेरी आंखें खुलती हैं।
3: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आप कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ के सुनते हैं और कौन सा पसंद है आपको सबसे ज्यादा?
2: सबसे ज्यादा तो मुझे न्यूज सुनना पसंद है।
3: अच्छा।
2: इसके अलावा मैं फिल्मी गीत बहुत सुनता हूँ।
3: ओके।
2: फिल्मी गीत के जितने कार्यक्रम है और संगीत के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो मैं सब सुनता हूँ।
3: तो गीत संगीत से आपका काफी लगाव है
2: जी।
3: तो आपने आज किस गीत को सुनने के लिए कॉल किया है हमें?
2: आज मैं सुनना चाहता हूँ इतना ना तू मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
3: ये बहुत ही प्यारा गीत है।
2: दोबारा बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी।
2: इतना ना तू मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। फिल्म का नाम छाया।
3: जी ठीक है, तो आपको हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
2: जी मैडम, धन्यवाद।
3: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: कौन बात कर रही हैं?
0: मैं सुनीता मिलन।
2: सुनीता जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
0: खंदारी से, आगरा खंदारी।
2: जी, और आप क्या करती हैं?
0: मैं फतमा,
2: किस चीज का बिजनेस है आपका?
0: बुटीक।
2: अच्छा, तो आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाते होंगे, है ना?
0: यस।
2: ठीक है ठीक है, तो हमारे इंटरेस्ट की चीज है। तो सुनीता जी, आपके घर परिवार में कौन कौन है?
0: जॉइंट फैमिली सभी हैं।
2: अच्छा, तो पूरा दिन आपका घर में बिजी रहता होगा,
0: हाँ
2: अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं?
0: हाँ निकल आता है।
2: अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या शौक रखते हैं आप?
0: सॉन्ग, फ्री टाइम में सॉन्ग सुनना।
2: अच्छा, गीत संगीत का शौक है आपको। तो अभी आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: तुम बिन मूवी का
2: जी, तुम बिन मूवी का कौन सा गीत?
0: कोई सा भी।
2: ठीक है, हम आपको तुम बिन मूवी का एक गीत सुनवाते हैं, और आप आगे भी हमें कॉल करते रहिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: दोस्तों आपको बता दें कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप हमारी फ़ोन लाइंस पर कॉल करके अपनी फरमाइश बता सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0562-3501-852 और 0562-2970-337। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से।
1: हेलो,
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: कौन बात कर रहे हैं?
2: विजय बात।
1: विजय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं आगरा से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
2: मैं जॉब करता हूँ।
1: जॉब किस सेक्टर में, किस फील्ड में?
2: फिनटेक।
1: अच्छा, और आप क्या क्या शौक रखते हैं?
2: शौक मुझे गाने सुनने का तो ज्यादा नहीं।

0: तो
1: नहीं
0: कोई शौक, कोई हॉबी
1: है।
0: होगी आपकी?
1: हॉबी कुछ इससे ज्यादा मेरी खास नहीं है।
0: अच्छा, तो आप पूरा दिन अपना जॉब में ही बिजी रहते हैं?
1: जी इसीलिए।
0: अच्छा, ठीक है। आपके घर परिवार में जो लोग हैं वो भी गीत संगीत में रुचि रखते हैं या मतलब जैसे आपने बताया वैसा ही है?
1: नहीं ऐसा ही है सर।
0: तो अभी आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है हमें?
1: ये अगर तुम साथ हो
0: तमाशा मूवी।
1: समाशा
0: जी ठीक है, हम आपको आपकी पसंद का सॉन्ग सुनवाते हैं।
1: ठीक है। तो ये सुनने को कैसे मिलेगा हमें?
0: आप रेडियो पे सुन सकते हैं आकाशवाणी आगरा पर, मोबाइल ऐप भी है न्यूज ऑन एयर ऐप, उस पर आप आगरा का चैनल चला के आप सुन सकते हैं ये प्रोग्राम।
1: ठीक है।

0: हेलो,
1: हेलो मैम।
0: नमस्ते।
2: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं विकास बात कर रहा हूँ।
0: जी विकास, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मथुरा।
0: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
1: मैं PCS की तैयारी करता हूँ।
0: अच्छा, तो इसके अलावा जैसे आपने पढ़ाई करी पूरा दिन, और उसके अलावा आप क्या करते हैं रिलैक्स करने के लिए?
1: वॉक करना और जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें सॉन्ग।
0: जी, तो किस तरह के गीत सुनना पसंद है आपको?
1: हिंदी माध्यम के।
0: हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग्स।
1: हाँ, बॉलीवुड।
0: जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कयामत फिल्म का एक सॉन्ग है जिसकी लाइन पर वो लड़की बहुत याद आती है।
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा गीत है वो। तो ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा और बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: इसी के साथ आज का ये सुरीला सफर यहीं ठहरता है, लेकिन गीतों की गूंज और यादों की महक यूं ही आपके साथ बनी रहेगी। आज हमने कुछ धुनों को सुना, कुछ लम्हों को जिया और कुछ एहसासों को शब्दों के सहारे आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश की। गीत सचमुच अजीब होते हैं, कभी वक्त को रोक लेते हैं, कभी बीते हुए कल को आज में ला खड़ा करते हैं और कभी बिना कुछ कहे मन की पूरी बात कह जाते हैं। दोस्तों, आपकी पसंद हमारे लिए फरमाइश नहीं बल्कि आपके दिल का एक संदेश है। इसी प्यार, इसी अपनेपन और इसी संगीत के रिश्ते के साथ हम फिर मिलेंगे कुछ नए गीतों, नई यादों और नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जिंदगी की हर छोटी खुशी को दिल से अपनाते रहिए।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, संवादक गरिमा शाकिर, प्रस्तुतकर्ता अनिंद्र सिंह।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को ही अब हमारी साझ की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा

0: बंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में स्वस्थ भारत समुन्नत भारत विषय पर होगी चर्चा, साथ ही सुनिएगा स्वच्छता को बनाए जन आंदोलन विषय पर चारू शर्मा से वार्ता।

शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में गौ आधारित प्राकृतिक खेती विषय पर चर्चा सुनिएगा और वार्ताकार डॉक्टर कौशल यादव से खाद्य सुरक्षा में पादप स्वास्थ्य की भूमिका विषय पर सुनिएगा वार्ता। कार्यक्रम मजदूर मंडल में एक व्यक्तित्व बिरला मुंडा विषय पर की जाएगी चर्चा और वार्ताकार माला गुप्ता से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा घरेलू हिंसा का परिवार पर प्रभाव। सात बजकर 7:10 पर स्वच्छ भारत सुंदर भारत विषय पर होगी वार्ता और वार्ताकार होंगी डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता। कार्यक्रम विविधा में कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का समय रहेगा 7:31 और रात्रि 8 बजे देशभक्ति परक कार्यक्रम भारत भारती। रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा शास्त्रीय संगीत। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे आचार्य नरेंद्र देव के विचार। गायक कलाकार सुरेश वाडेकर से सुनिएगा श्री राम चरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर आर सी यादव की वार्ता। विषय रहेगा कृषि यंत्रों के रख रखाव में सावधानियां।

सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आंखों के लिए पोषण का महत्व विषय पर वार्ता। वार्ताकार होगी डॉक्टर वीणा अग्रवाल। कल सुबह 7:31 का समय रहेगा आसपास की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइएगा। कार्यक्रम गीतांजलि में समय 8:45। सुबह 9:45 पर सुनिएगा रागनी से लोक संगीत और 10:30 पर आनंद लीजिएगा विदुषी गिरिजा देवी से शास्त्रीय संगीत का। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

गीत हमने लिया था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसे लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। अगली प्रस्तुति फिल्म अपराधी से है, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचना आनंद बख्शी की है और आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की

आस्था के इस भक्ति गीत को सुरों से सजाया था सारंगदेव ने। रचना गुलजार की थी और आवाज थी रविशंकर की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म जुल्म का बदला से है। संगीत रचना और आलेख रविंद्र जैन का है और आवाज है आशा भोसले की।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। हाजिर है आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां हम सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि नॉलेज रिच बातें करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप ये तो बताइए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और भरपूर पानी और तरल पदार्थ जैसे कि जूस, शरबत आदि का सेवन भी कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेज़ गर्मी, गर्म लू के प्रकोप से बचने का ये एक इफ़ेक्टिव समाधान है। वैसे तो दोस्तों इन दिनों एक्सपर्ट्स की एडवाइस यही रहती है कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और हम सब जानते हैं स्कूल कॉलेजेस में भी छुट्टियां कर दी जाती हैं और जो कि आजकल चल ही रही हैं, और ऐसे में छुट्टियों को इत्मीनान से बिताने के लिए हमें याद आता है दादा दादी या नाना नानी का घर। नहीं तो मन करता है किसी जगह पर, यानी कि पहाड़। और दोस्तों हम तो ठहरे भारतवासी, बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि देश हर ओर, हमारे देश के हर ओर पर्वतीय

श्रृंखलाएं स्थित हैं। पूर्व में पूर्वी घाट, दूसरी ओर अरावली रेंज, दक्षिणी दिशा में है दक्षिणी घाट और उत्तर में है सरताज हिमालय, और इसी हिमालय में बसता है चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड राज्य में, और यहीं पर है खूबसूरत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि 87 किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको पता है ये नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में मशहूर है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ फूलों की कई प्रजातियाँ जैसे कि दुर्लभ अल्पाइन फूलों की प्रजातियाँ ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी, प्रिमूला और मैरीगोल्ड आदि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुमूल्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं। दोस्तों, इस नेशनल पार्क में हिमालय काले भालू, कस्तूरी हिरन, स्नो लेपर्ड, लाल लोमड़ी और नील भेड़ जैसे दुर्लभ जानवर और हिमालय मोनाल जैसे पक्षी भी निवास करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जानकर मुझे ऐसा लग रहा है जल्द ही मुझे यहाँ जाना चाहिए और मन भावन नज़ारे का लुत्फ उठाना चाहिए। आई एम श्योर आप तो अब तो ये बस आपकी बकेट लिस्ट में शामिल हो ही चुका होगा। लेकिन एक और ज़रूरी बात बता दूँ दोस्तों, फूलों की घाटी 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ही खुला रहता है, तो प्लान बनाने से पहले इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। वैसे साथियों, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सोच कर कि हम फूलों की घाटी में कितना कुछ अलग अलग फ्लोरा और फौना के बारे में जान सकेंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे। वहाँ रंग बिरंगे फूलों के नज़ारे, सुगंधनुमा हवा का आनंद लेंगे और आते जाते में पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे, वो रास्ते, अरे वाह जी वाह, मुझे तो अभी से खूबसूरत अनुभूति हो रही है। आइए आपको भी करवाते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वेलकम बैक दोस्तों। साथियों, इन दिनों वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल से तो हमारे जेब पर सीधा असर पड़ ही रहा है, लेकिन हमारे देश के मौजूदा हालात भी कहीं ढांढस बनाने का कार्य तो नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ढांढस बनाना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, कहीं हो रहे बदलावों पर माता पिता और टीचर्स की नाराजगी, वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई चुनौतियाँ। दोस्तों, ये सब कम नहीं है हमें चिंता में डालने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर देश के लोग स्वस्थ होंगे तो वे पढ़ाई, नौकरी और देश के विकास में बेहतर योगदान दे पाएंगे। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने काम को अच्छे से करता है और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। जब समाज के लोग स्वस्थ होते हैं तो देश की प्रगति भी तेज हो जाती है और जीवन में खुशहाली बढ़ती है। लेकिन आज के समय में भारत में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। गंदगी, प्रदूषण, गलत खान पान और भी ऐसे कई कारण हैं जिनके वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां सभी तेजी से बढ़ते जा रही हैं। साथ ही मानसिक तनाव भी एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने छोटे छोटे बदलाव लाएं अपनी जीवन शैली में, जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखना, संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन करना, और रोज़ाना थोड़ा समय व्यायाम या योग के लिए ज़रूर निकालना। दोस्तों, सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई कार्यक्रम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में मदद कर रहे हैं। याद रखिए, स्वस्थ भारत और समुन्नत भारत एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्र के विकास का मार्ग स्वस्थ नागरिकों से होकर के गुजरता है, इसलिए सरकार और

0: समाज के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे ना, तभी स्वस्थ, सशक्त और समुन्नत भारत का निर्माण होगा। वैसे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेहत की, इससे मुझे याद आया, मैंने हाल ही में पढ़ा था CRISPR Cas9 के बारे में, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग सिकल सेल रोग के इलाज के लिए किया जा रहा है। चलिए उससे पहले समझते हैं कि सिकल सेल रोग क्या होता है। सिकल सेल रोग एक जन्म से होने वाली बीमारी है, ये अनुवांशिक है। इस बीमारी में खून की लाल कोशिकाएं, जो आमतौर पर गोल या नरम होती हैं, वो बदलकर सी शेप की हो जाती हैं और थोड़ी सी कठोर भी हो जाती हैं। ये खराब कोशिकाएं खून की नसों में फंस जाती हैं, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से मरीज को अचानक तेज दर्द होने लगता है और इसका इलाज जो है वो ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में दोस्तों, इस बीमारी को पूरी तरह ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन समय पर सही इलाज मिलने से मरीज जो है वो सामान्य जीवन जी सकता है। और इस इलाज के लिए आपको जाना होगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दी गई दवाइयाँ जो हैं इस दर्द को कम करने में, खून की कमी को कंट्रोल करने में और आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगी और आप एक बेटर लाइफ ज़रूर जी पाएंगे। लेकिन हाँ, याद ज़रूर रखिएगा कि खूब सारा पानी पीना है, जिससे आपका खून पतला रहे और नसों में रुकावट कम हो। साथ ही आराम और अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर बीमारी बढ़ जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसी दुर्गम परिस्थितियों तक जाना ही क्यों, इतना स्ट्रेस लेना ही क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और सही समय पर सही इलाज जो है ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, अभी हम स्वास्थ्य की बात कर ही रहे हैं और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रिश्ता है स्वच्छता के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर क्या ये वाकई हमारे जीवन का, हमारे आचरण का हिस्सा है? चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं इसी नोट पर हमारी आज की वार्ताकार चारू शर्मा जी से, जिनसे हम जानते हैं कि स्वच्छता को बनाएं किस प्रकार जन आंदोलन।
1: स्वच्छता को प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में संपन्नता से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर साफ सफाई होती है, वहाँ पर धन की देवी महालक्ष्मी जी का वास होता है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और पर्यावरण को शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। स्वच्छता का संबंध केवल खानपान और वेशभूषा से ही नहीं होता, बल्कि जहां हम रहते या काम करते हैं उसके आसपास के क्षेत्र से भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंदगी सभी बीमारियों की जड़ है और साफ सफाई रखकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में लाखों लोग खुले में शौच करते हैं, जहां मन आता है कूड़ा करकट डाल देते हैं, पवित्र और जीवनदायिनी नदियों में गंदगी प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण प्रदूषण होता है और कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। जब लोग किसी ऐसे स्थान के आसपास रहते हैं जहां पर चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला होता है और नालियों में गंदा जल और गंदगी पड़ी रहती है, तो इस वजह से उस क्षेत्र के वातावरण में बहुत से विषाणु, कीटाणु और बदबू तक उत्पन्न हो जाती है और कभी तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि इस बदबू के कारण वहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्थान पर रह रहे लोग कई तरह की संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वहां की गंदगी से जल, थल, वायु आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से रहित रखने के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छता के कारण मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे मानव की औसत आयु बढ़ती है। स्वच्छता से पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल बनी रहती हैं। सामान्य अर्थों में अगर हम कहें तो स्वच्छता से अभिप्राय स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को हानिकारक तत्वों जैसे गंदगी और कीटाणुओं से मुक्त रखना है। स्वच्छता से शरीर शुद्ध रहता है और इससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। आज हम एक शिक्षित समाज में

0: रहने का दम भरते हैं और स्वच्छता के महत्व से भली भांति परिचित भी हैं। परंतु सच यही है कि जब भी हम अपने घर के आसपास के वातावरण पर नज़र डालते हैं तो यदा कदा कूड़ा नज़र आ ही जाता है। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का स्वप्न देखा था। वह चाहते थे कि प्रत्येक भारतवासी स्वच्छता के महत्व को समझे और उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाए, क्योंकि वह स्वयं स्वच्छता के महत्व से अच्छे से परिचित थे। गांधी जी के इसी स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य गांधी जी की 150वीं जयंती तक संपूर्ण भारत को एक स्वच्छ भारत में बदलना था। इसका शुभारंभ उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर किया और सभी देशवासियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनेक कार्य किए गए। स्कूल, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग भी दिया। परंतु वास्तविकता यही है कि इतने सब प्रयासों के बावजूद भी हम स्वच्छ भारत के इस लक्ष्य को निश्चित समय सीमा तक पूरा नहीं कर सके। आज भी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पर कार्य किया जा रहा है। क्या हम सबको नहीं लगता कि देश को स्वच्छ करना केवल सरकार का काम नहीं है? इस देश के नागरिक होने के नाते ये हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो भारत को स्वच्छ करने में अपना 100% योगदान दें। स्वच्छता हम सभी की मौलिक जरूरत है। राष्ट्रपिता बापू का स्वच्छ भारत का स्वप्न तब तक साकार नहीं होगा जब तक हम संपूर्ण भारत को अपना घर नहीं मानेंगे। मैंने देखा है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी डस्टबिन में कचरा डालने के बजाय सड़क पर कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। अगर हम अपने देश को स्वच्छ देखना चाहते हैं तो हमें इसके लिए स्वयं आगे आना होगा। जब तक स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप नहीं लेगा तब तक हम स्वच्छ भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सभी नागरिकों को समझना होगा कि जिस प्रकार वे अपने घर साफ रखते हैं और ऐसे ही कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, वैसे ही अपने घर के आसपास भी कूड़ा नहीं डालना चाहिए और जहां तक संभव हो साफ सफाई रखनी चाहिए। और साथ ही स्वच्छता में बाधक तत्वों के प्रसार पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता के ना होने के दुष्प्रभाव समाज में रह रहे सभी समुदायों पर पड़ते हैं। भारत तभी स्वच्छ हो सकता है जब सभी नागरिक मिलकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दें। हमें यह समझना होगा और अपने परिवार व आसपास के सभी लोगों को समझाना होगा कि अपने देश को स्वच्छ रखना हमारा ही कर्तव्य है। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए सबको अपने अपने स्तर पर योगदान देना होगा। देश का भविष्य होने के नाते युवाओं को इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। आजकल के युवा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं और स्वच्छता के लाभों से अवगत करा सकते हैं। जब अधिक से अधिक युवा इस आंदोलन से जुड़ेंगे तब ही यह स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन सकेगा। इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए छोटे से बड़े तक सबको अपना सहयोग देना होगा। सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, परंतु इसे जन आंदोलन का रूप देना अब हमारा काम है।
1: बिल्कुल सही कहा हमारी वार्ताकार शारू शर्मा जी ने कि इस स्वच्छता के जन आंदोलन को एक सफल आकार देना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वच्छता को अपने आचरण में शामिल करें। सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने शहर को ही नहीं, इस पूरे देश को स्वच्छ बनाएं। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे, जारी रखेंगे अपनी बातचीत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बड़ी देर हो गई,

कनिका ने अभी तक आज का सवाल नहीं पूछा। दोस्तों, आपका आज का सवाल है, धरती आबा किसे कहा जाता है? आप सोचिए इसके बारे में, कौन है वो व्यक्ति। हम बताएंगे आपको इसका जवाब, लेकिन इस गाने के बाद।

तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस गाने के बाद। और इस आपको याद दिला दूं, इस गाने से पहले मैंने आपसे किया था एक सवाल कि धरती के आबा किसे कहा जाता है। दोस्तों, धरती के आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा जी को, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित किया था और उलगुलान महान विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है 9 जून, यानी कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि। तो दोस्तों, आपको एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, बिरसा मुंडा जो कि आवाज़ बने ट्राइबल्स की, आदिवासियों की, और जल जंगल ज़मीन की, उन्होंने कई समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को एकजुट तो किया ही किया, अधिकारों के लिए लड़ने की भी प्रेरणा ली। ऐसे कई आंदोलन किए जिनसे लोगों में नई जागरूकता पैदा हो गई। मैं आपको बता दूं कि आज के इस समय में हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनकी हिम्मत, उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उनका नेतृत्व, उन्होंने लोगों को साथ लेकर समाज की भलाई के लिए काम किया। शिक्षा और जागरूकता, उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, और हम आज के युवा भी ज़रूरी है कि उतने ही जागरूक बने और समाज की समस्याओं को समझें। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, संस्कारों और संस्कृति का सम्मान करना। हमें अपनी पहचान और अपने मूल्य कभी नहीं भूलने चाहिए। बिरसा मुंडा जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि हमारे इरादे मजबूत हों तो हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प भी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों, हम हैं आज के इस डेवलपिंग नेशन के युवा। हम में ही वो ताकत है कि जो इस चैलेंजिंग रियलिटी को बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। हम जल्द ही मिलेंगे नई बातों के साथ अपने कार्यक्रम युववाणी में। आप सभी सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम भाइयों बहनों, मैं लोकेंद्र पाठक कार्यक्रम ग्रामीलोक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है ना। वैसे कुछ ही दिनों की बात है, फिर बरसात चालू हो जाएगी। ये सर्दी, गर्मी, बरसात, यही तो प्रकृति है। और हम किसानों का तो पूरा जीवन ही इस प्रकृति पर आधारित होता है। प्रकृति स्वस्थ होगी तो अच्छी बरसात होगी, जिससे हम किसानों की अच्छी खेती होगी। लेकिन प्रकृति स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें जल, जंगल और जमीन के महत्व को समझना होगा। ठीक उसी प्रकार समझना होगा जैसे 19वीं सदी के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने समझा था। साथियों, बिरसा मुंडा 19वीं सदी के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने झारखंड के

मुंडा संप्रदाय में जन्म लेके अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन उल गुलान शुरू किया था। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज में एकता रहे, जिससे अपनी संस्कृति, जल, जंगल और जमीन की रक्षा हो सके। इसीलिए उन्हें धरती आबा यानी जगत का पिता कहा गया। मित्रों, आज हम महान जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मित्रों, हम किसान प्रकृति के महत्व को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आज अनेक किसान प्राकृतिक खेती करने लगे हैं। प्राकृतिक खेती बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर आधारित खेती होती है, जिसमें जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए केवल गाय के गोबर और गोमूत्र और प्राकृतिक अवशेषों को उपयोग किया जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि आजकल गांव की चौपाल में जब हम सब लोग बैठे होते हैं ना, हम किसान, तो अक्सर एक बात आपको चर्चा मिल ही जाएगी कि भैया खेती की लागत बढ़ती जा रही है, खाद है, दवा है, हर चीज के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भैया लागत तो बढ़ेगी ना भैया। इसी बीच अच्छी बात यह है कि कुछ किसान साथी अब गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। वे गोबर और गोमूत्र के सहारे खेती कर रहे हैं, जी हां, और पहले से भी अच्छी खेती कर ले रहे हैं। साथियों, हमारे गांव में पहले से ही गाय हमारे परिवार का हिस्सा रहती हैं, ये तो हम सबको पता ही है। गाय हमें दूध देती है, बछड़े देती है और खेतों के लिए उपयोगी संसाधन भी प्रदान करती है, और इन्हीं सबसे जुड़ी हुई है आज की हमारी जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक खेती। इसमें गोबर से खाद तैयार की जाती है और गोमूत्र से जैविक घोल बनाया जाता है। इससे खेत की मिट्टी को पोषण मिल जाता है। मित्रों, आज किसान जीवामृत, घन जीवामृत जैसे जैविक घोलों को उपयोग कर रहे हैं। ये खेत में क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? घर की रसोई में बना अच्छा भोजन जो शुद्ध हो वो खाना चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे खेत की मिट्टी स्वस्थ रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा? गोबर और जैविक पदार्थ जो मिट्टी को सही प्रकार से पोषण दे सके। इसीलिए आज हम सब किसान लोग जो आधुनिक किसान हैं, जो अपनी खेती से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं और अपनी मिट्टी को स्वस्थ करना चाहते हैं, यानी अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ करना चाहते हैं, वो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे खेती में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाए, खेत की मिट्टी भी स्वस्थ होगी इससे और खेती की लागत भी कम हो जाएगी। साथियों, आजकल मौसम तेजी से बदल जाता है, कभी तेज गर्मी, कभी आंधी, कभी अचानक बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे समय में मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। जब मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ते हैं तो वे नमी को अधिक समय तक संभाल कर रख सकती है। इससे होगा क्या, फसल को लाभ होगा। हमारे आगरा और ब्रज क्षेत्र में गाय को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। हम तो जानते ही हैं भैया, ये श्री कृष्ण की नगरी है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया है। भैया, हमारे गांव के बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे कि गाय और खेती का रिश्ता बहुत पुराना है, और आज वैज्ञानिक भी खेत की मिट्टी में प्राकृतिक खेती से जैविक पदार्थ बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। साथियों, यदि किसान अपने खेत में उपलब्ध गोबर, फसल अवशेष व अन्य जैविक पदार्थों को उपयोग करने लग जाए ना, तो खेती में होने वाले जो हम बाहरी खर्च करते हैं ना, वो काफी कम हो जाएगा। जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो साथियों करते क्या है, हम उसे सीखते हैं। वैसे तो ये नया काम नहीं है, प्राकृतिक खेती बहुत पहले से होती जा रही है, लेकिन जो साथी हमारे प्राकृतिक खेती करना नहीं जानते हैं तो वो क्या करें, वो अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहां तक कि कृषि विभाग से भी प्राकृतिक खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। भाई, खेती हम बस फसल लेने के लिए ही तो नहीं करते हैं ना, खेत में खेत की मिट्टी अच्छी रहे, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण अच्छा रहे, हमें ये सब देखना होगा। तो साथियों, आशा है कि आप सब भी खेती में प्राकृतिक खेती

अपनाएंगे रासायनिक खेती के जहर से अपनी, अपने परिवार की और साथ ही पूरे समाज की रक्षा करेंगे। अच्छा, अब हमें पता है कि कार्यक्रम में समय हो चला है गीत संगीत का, और आपका भी मन कर रहा है गीत संगीत का, तो आइए हरिओम सिंह सिकरवार के सुरों में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: साथ ही लोकगीत से पहले हम बात कर रहे थे गौ आधारित प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती से हमारे खेत स्वस्थ रहते हैं। इसी प्रकार फसल स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। यदि फसल स्वस्थ रहेगी तो खेत से ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता का अनाज, फल और सब्जियां मिलने लग जाएंगी। इसलिए फसलों की समय समय पर देखभाल करना और उन्हें रोगों से बचाना बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ पौधे ही हमारे भोजन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए आइए अब हम सभी डॉक्टर कौशल यादव से खाद्य सुरक्षा में पादप स्वास्थ्य की भूमिका विषय पर विस्तार से वार्ता को सुनते हैं।
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं हमारे श्रोता बंधुओं, आज हम खाद्य सुरक्षा एवं पादप स्वास्थ्य भूमिका पर एक विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानव स्वास्थ्य के लिए उसकी उपयोगिता के संबंध में बात करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है खाद्य सुरक्षा क्या है और मानव जीवन में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद्य सुरक्षा एक प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। अगर हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ी और ये जो खाद्य सुरक्षा है वो मानव जीवन के लिए उपयोगी क्यों है, इसके प्रमुख आधार हैं जिन पर हम एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भोजन की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की भोजन की उपलब्धता कराना हमारा प्रथम उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ हम भोजन मानव तक कैसे पहुँचेगा, उसकी क्या पहुँच रहेगी, इसके बारे में भी हम प्रमुख इसको महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। साथ ही भोजन का उचित उपयोग, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम खाद्य उपयोगिता में, खाद्य सुरक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उपयोग रहेगा वो हमारा भोजन का उपयोग रहेगा। हमारा किसी भी तरीके से कोई भी जो भोजन है वो उचित उपयोग हो सके। भोजन सभी परिस्थितियों में उपलब्ध होना ये भी अनिवार्य है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं इन चारों को मजबूत बनाने के लिए पादप स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पूरी तरह खेती देश के किसानों पर निर्भर रहती है। किसान वर्ष भर परिश्रम करके फसल उगाता है, वह खेत में तैयारी करता है, बीज की बुवाई करता है, सिंचाई करता है, उर्वरक देता है और साल भर देखभाल करता है। लेकिन फसल कीट या रोग खरपतवार का प्रकोप हो जाने पर पादप स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन घट जाता है। इसका प्रभाव खाद्यान्न वस्तुओं पर पड़ता है और हमारी खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 30-40% उत्पादन कीटों एवं रोगों से कम होता है, अतः पादप सुरक्षा का सीधा संबंध उत्पादन से है। यदि उत्पादन अधिक नहीं होता है तो सीधा प्रसार खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा।

बात करते हैं खाद्य सुरक्षा एवं फसल स्वास्थ्य संबंध, तो खाद्य सुरक्षा की शुरुआत खेती से होती है। यदि खेती फसल स्वस्थ रहेगी तथा गोदामों में अनाज पहुंचेगा, तभी लोगों को थाली तक भोजन पहुंचेगा। पौध स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को महत्वपूर्ण एवं मजबूती में भूमिका जो निभाते हैं, उनके मुख्य बातें हैं वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उत्पादन बढ़ाने में सहायक। जो पादप सुरक्षा है वो खाद्यान्न को उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है। फसल की गुणवत्ता बनाए रखना, ये भी एक पादप सुरक्षा के हिसाब से खाद्यान्न में बढ़ोतरी करता है। इसके साथ हम कटाई के बाद होने वाली जो हानि होती है फसलों में, उनको भी हम कम करके खाद्यान्न को बढ़ावा दे सकते हैं। किसानों की आय को बढ़ाना है तो हमें पादप स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। इसका सीधा असर हमारे खाद्यान्नों पर पड़ता है। किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम देना चाहेंगे यहाँ पे। अगर खाद्यान्न को बढ़ावा देना है, खाद्यान्न सुरक्षा करना है, देश के प्रत्येक व्यक्ति तक थाली तक भोजन पहुँचाना है, तो किसानों को खेती करते समय निम्न बातों पर जरूर ध्यान देना है, जिससे किसानों को ही फायदा नहीं अपितु पूरे देश को बहुत अच्छा महत्वपूर्ण खाद्यान्न में फायदा मिलेगा। उस लगभग मुझे लगता है कि अनाज की जो कमी होती है वो 30 से 40% तक बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए प्रमाणित बीज एवं स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। किसान साथी अगर किसी भी फसल की बुवाई करते हैं, चाहे वो दलहनी फसल हो, चाहे वो अनाज वाली फसल हो, या किसी भी फल वृक्ष को लगाते हैं, तो प्रमाणित बीज और स्वस्थ बीज का उपयोग करें, जिससे आपकी आने वाली फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन बढ़ेगा। समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें। किसान भाई अगर खाद्यान्न को बढ़ावा देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है खेत की देखभाल। यदि आप समय समय पर खेत की देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें आने वाले कीट रोग की प्रारंभिक अवस्था में आप बचाव नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपकी जो फसल है उसमें नुकसान पहुंचेगा और आपका उत्पादन घटेगा। किसान साथियों अगर आपका उत्पादन कम होता है तो जिसका सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है, खाद्यान्नों पर पड़ता है। किसान साथियों आपको फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक खेती को उर्वरता पूर्वक बनाए रखने के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों सबसे बड़ी भूमिका होती है संतुलित उर्वरक की। जैसे कि अभी हमारे देश में एक बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है, खेती बचाओ अभियान, जिसका सीधा असर संतुलित उर्वरक प्रबंधन से पड़ता है। अगर हम संतुलित उर्वरक प्रबंध का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं तो हमारी खेत की जो मिट्टी है वो काफ़ी लंबे समय तक उपयोगी रहेगी और अच्छी फसलों में उसकी पैदावार बढ़ाएगी। किसान साथियों संतुलित उर्वरक में आपको हमेशा NPK यानी DAP, यूरिया, पोटाश के साथ साथ सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, आयरन, मैग्नीज, इन सभी तत्वों को भी मिलाना बहुत आवश्यक है, जिससे पौधे को पूर्ण रूप से भोजन मिल सके और आपका जो उत्पादन है वो बढ़े। संतुलित उर्वरक का एक फसल पर और प्रभाव पड़ता है, यदि आप संतुलित उर्वरक प्रयोग करते हैं तो आप पूरी तरीके से फसल में होने वाले रोगों को बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान साथियों हम देखते हैं हमारी परंपरागत जो खेती थी वो जैविक खेती थी, और हम लोग इस टाइम जो अधिक उर्वरक प्रयोग करने से हम जैविक खेती की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, तो हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती भी को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ किसान साथियों खाद्यान्न में हमारा सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा में जो आता है वो प्रत्येक व्यक्ति तक संतुलित पोषण यानी संतुलित आहार पहुंचना होता है, जिसमें दलहन भी होती है, जिसमें आपकी अनाज वाली फसलें भी होती हैं, विभिन्न प्रकार के फल वाले भी होते हैं जो आपके खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं। इसका सीधा सीधा जो भूमिका होती है वो हमारी पादप स्वास्थ्य की होती है। अगर पादप यानी फसलों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी जो पादप स्वास्थ्य सुरक्षा का असर है वो खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। देश में प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिले ऐसी मंशा के साथ किसानों को हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम आप पादप सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर हमारे जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दें। मेरे किसान साथियों यदि हम खाद्य सुरक्षा की मजबूत भवन माने तो स्वास्थ्य
उसकी नींव है। बिना पादप सुरक्षा के न तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, न ही गुणवत्ता बनाई रखी जा सकती है।

और ना ही भविष्य में किसी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि मैं इस चर्चा में बात करने वाला था कि खाद्य सुरक्षा की भूमिका क्या है, पादप सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको जैसे इस चर्चा में पता चला है कि हम जो भी का खाद्यान्न उत्पादन करते हैं वो पेड़ पौधे एवं फसलों से प्राप्त करते हैं, तो अगर हम इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे, इनके स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारा जो उत्पादन है वो घटता चला जाएगा, जिसका सीधा असर हमारे खाद्य सुरक्षा

0: अभी हमने डॉक्टर कौशल यादव से खाद्य सुरक्षा में पादप स्वास्थ्य की भूमिका को विस्तार से समझा। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, आजकल कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ड्रोन की मदद से किसान कम समय में बड़े खेतों में दवा और उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मित्रों, इसमें दवा की बचत भी हो जाती है, मजदूरी का खर्च कम हो जाता है और किसान को खेत में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथियों, ये तो थी ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारी कि हम खेती में ड्रोन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं और आजकल कैसे इसका उपयोग किया जा रहा है। अब जानकारी लेते हैं मौसम की। विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। आसमान साफ रहा। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जहां सब्जियों के भाव में टमाटर का भाव है 600 से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज 600 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी का भाव है 2500 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल और आलू का भाव है 500 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल। तो साथियों, हमने मंडी भाव की जानकारी ले ली, मौसम की जानकारी ले ली और अब समय हो चला है आपके मनोरंजन का। तो आइए सुनते हैं रामदास बालक के सुरों में ये लोकगीत।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लोक मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप भले चंगे होंगे। अब देखिए ना, हर बार कार्यक्रम के दौरान हम तो आपका हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन आप क्यों शब्दों की इतनी कंजूसी करते हैं पत्र लिखने के दौरान? भाई खुलकर लिखिए, जो आपके मन में है वो पूछिए। आप भी हम सबका हालचाल पूछिए, कार्यक्रम को लेकर मन में कुछ चल रहा है तो वो भी पूछिए, पर जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहने से, एकजुट रहने से अकेलापन नहीं लगता और बड़ी बड़ी समस्याएं अपना झोला पट्टा उठाकर रघु चक्कर हो जाती हैं। और कहीं आपने खुद को कमजोर मान लिया तो क्या होगा पता है? सारी समस्याएं राशन पानी लेकर आप पर हावी हो जाएंगी। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, और एक समझदार इंसान की यही पहचान है कि कमियों को दूर करने की सोचे और अपने मनोबल को बनाए रखे। जैसे कठिन हालातों में भी हमारे देश के वीर कभी पीछे नहीं हटते, और उन्हीं वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र हो सका। माना कि सफर लंबा था, कठिन था, लेकिन क्योंकि सबका लक्ष्य एक था इसीलिए हम आज़ाद हो सके। जबकि कितने ही वीर जवानों ने मौत को गले लगा लिया, घुट घुट कर जीने से अच्छा उन्होंने मर जाना समझा, ताकि देश के अन्य लोग आज़ादी का आनंद उठा सकें। साथियों, बिरसा मुंडा भी उन्हीं वीरों में से एक थे, जिनके विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में जन्मे बिरसा मुंडा का संबंध आदिवासी जनजाति से था। आज उनका नाम देश में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में

अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति को छुपाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को भी छुपाते हैं, एक दिखावटी जिंदगी जीते हैं। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो उनके साथ हैं। असल में साथियों, अगर कोई तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं कर रहा जैसे आप सच में हो, फिर तो रिश्तों में सच्चाई ही नहीं होगी। और जब रिश्तों में सच्चाई नहीं होगी तो वो दूर तक नहीं चलेंगे। लेकिन बिरसा मुंडा की हिम्मत देखिए कि उन्होंने अपनी जाति की विरासत को संभाला, अपनी आदिवासी जनजाति को पहचान दिलाई और सरकार से अधिकार भी दिलाए और अपनी जनजाति के लोगों को एकजुट करके ना सिर्फ जागरूक किया बल्कि उन्होंने देश के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने अपने समाज की जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहकर अपने समाज में सुधार किया। वो एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने नशे, जादू टोने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और बिसराइत नाम से धार्मिक आंदोलन भी किया, जिसमें उन्होंने प्रकृति से प्रेम करना, ईश्वर की एकमात्र सत्ता को पहचानना और नैतिक जीवन जीने और साफ सफाई रखने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने उल गुलान यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ महान विद्रोह छेड़ा और अबुआ दिशुम अबुआ राजे का नारा दिया, यानी अपनी जमीन अपना राज। इस नारे ने सारे आदिवासी समाज में जोश भर दिया। इसका करारा जवाब देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रचा और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया और रांची की जेल में ही आज ही के दिन सन 1900 में सिर्फ 25 वर्ष की युवावस्था में उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु बीमारी से हुई, लेकिन साथियों आज भी उनकी जनजाति के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। श्रमिक साथियों, जब भी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो सच में दुगने जोश और उत्साह के साथ जिंदगी की जंग जीतने के लिए मन बेताब हो उठता है। आज बिरसा मुंडा के जीवन का त्याग सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा बन चुका है, ताकि हम सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें।

0: साथियों, बिरसा मुंडा के बारे में आपने चर्चा में जाना, चाहे उनका जीवन कठिनाइयों भरा था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल को देश और अपने आदिवासी परिवारों के लिए समर्पित कर दिया। क्या आपको पता है कि उनके नाम से देश के एक हवाई अड्डे का नाम भी है? तो चलिए बताइए, वो हवाई अड्डा किस शहर में है? साथियों, बिरसा मुंडा की जन्म शती पर एक दिवस भी उनकी याद में मनाया जाता है। हर साल भारत सरकार द्वारा ये दिवस जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया जाता है। उन्होंने हम देशवासियों को सिखाया कि खुद पर अत्याचार मत होने दो। श्रमिक साथियों, अत्याचार, हिंसा और जोर जबरदस्ती से ना तो रिश्ते अच्छे रहते हैं, ना ही परिवार और समाज का विकास होता है। जिसमें घरेलू हिंसा तो परिवार के हर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है। और साथियों, अगर परिवार में हिंसा हो रही है तो बताइए फिर कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है? जबकि कहते हैं ना, कहीं भी चले जाओ, चैन तो घर परिवार में ही मिलता है। लेकिन जिन परिवारों में घरेलू हिंसा होती है, वहाँ कितना डर का माहौल रहता है, हर वक्त घुटन भरा माहौल रहता होगा। किस किस तरह से हिंसा से परिवार प्रभावित हो जाता होगा और बच्चे भी घरेलू हिंसा की चपेट में आ जाते होंगे। तो साथियों, आइए इसी विषय पर जाने वार्ता के माध्यम से, और वार्ताकार हैं माला गुप्ता।
1: वर्तमान समय में एक ओर आधुनिकता एवं सामाजिक विकास व विकसित सभ्यता की बातें कही जा रही हैं, वहीं बाजारवाद, संकीर्ण मानसिकता, पुरुष प्रधानता, दहेज लोलुपता एवं

वैचारिक निर्धनता के कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया में 20 से 25% महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं। घरेलू हिंसा का संबंध परिवार में महिलाओं, बुजुर्ग व नादान बच्चों पर किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न है। यह जघन्य अपराध घर की निजता में, घर की चारदीवारी के अंदर ही घर के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं पर किए जाते हैं। दहेज हत्या, पत्नी को पीटना, विधवा व बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार, यौन हिंसा, घर के अन्य पुरुषों व महिलाओं द्वारा बेटी या बेटे के साथ हिंसक दुर्व्यवहार सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में मातृशक्ति की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन वास्तव में महिलाओं को अपने विचार रखने या अपने हित में कुछ बोलने की पाबंदी है। ऐसी हालत में उनके साथ हिंसक व्यवहार भी हो तो उनकी जिंदगी भय व डर के वातावरण में ही गुजरेगी। भारत में नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही देवी है, नारी ही पूज्या है, परंतु इस समाज के अपमान, तिरस्कार व उत्पीड़न की नारी ही भोग्या है। हास्यास्पद बात यह है कि हमारे समाज में नारी को देवी माना जाता है, परंतु उसे पत्थर की मूर्ति के समान भावनाओं और इच्छाओं से विहीन समझा गया है। यदि कोई स्त्री इस दृष्टिकोण के विपरीत अपना आत्मनिर्भर व्यक्तित्व विकसित करना चाहे तो न केवल समाज में वरन परिवार में भी कहीं पुरुष तो कहीं अन्य महिला द्वारा उसका उत्पीड़न करना सामान्य बात हो गई है। ऐसी स्त्रियों को निर्लज, बेहया आदि अलंकरणों से लाद कर परिवार में ही उनका शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता है। पुत्रियों को हीन भावना से ग्रसित करके अंकुश लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुशिक्षित व स्वावलंबी कामकाजी महिलाओं को भी परिवार में लांछन सुनने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न भारतीय समुदाय की महिलाएं स्वयं को समाज का प्राकृतिक शिकार मानती हैं व हीन भावना के कारण वे हिंसा को अपना भाग्य समझकर उसके आगे समर्पण कर देती हैं। दुख की बात है कि पिता के परिवार या पति के परिवार में ऐसी मारपीट का जिक्र करने में इन महिलाओं को लज्जा अनुभव होती है। अगर शिकायत करे भी तो उन्हें ही दोषी मानकर चुप रहने की सलाह दी जाती है। हमारे समाज में कहीं पिता व भाई और कहीं पति व सास दोनों ही परिवारों में महिला की पिटाई को निरपेक्ष अधिकार माना जाता है। ऐसी सामाजिक स्थिति में महिला बहुत असहाय अनुभव करती है, क्योंकि वह जहां कहीं भी शिकायत करे, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे पड़ोसी, पुलिस या वकील, सभी उसको परिस्थिति से समझौता करने की सलाह देते हैं व परिवार की इज्जत की बात करते हैं। और अगर छोटे बच्चे घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं तो अपने से बड़ों की मारपीट या यौन हिंसा से इतने भयभीत हो जाते हैं कि बोल भी नहीं सकते, अन्यथा उन्हें परिवार के लोगों का और अधिक अत्याचार सहना पड़ सकता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, जिस पर संस्कृति का संपूर्ण ढांचा स्थिर है। परिवार नारी व पुरुष के योग से बनता है, जिसमें नारी का स्थान प्रमुख है, क्योंकि संतान धारण करने से लेकर उसे जन्म देने व पालन करने का सारा दायित्व नारी ही उठाती है। यही नहीं, घर बसाना, उसे चलाना, उसकी भावात्मक व्यवस्था रखना नारी द्वारा ही संभव है। यदि वह अपने इस दायित्व से हाथ खींच ले तो यह व्यवस्थित दिखाई देने वाला संपूर्ण समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे में परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था की निर्मात्री व संचालिका नारी का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा या उसकी प्रताड़ना, वो भी अपने परिवार में कहाँ तक उचित है। अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते हुए कहा है कि किसी भी राष्ट्र या समाज की समृद्धि वहाँ की नारी के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जिन समाजों में नारी का सम्मान है वह समाज समुन्नत होकर आगे बढ़े हैं, परंतु जहाँ इसके विपरीत हो, अर्थात परिवार में ही माँ अथवा पत्नी, बहन या बेटी का स्वयं विकास न हुआ हो, जो स्वयं घर की चारदीवारी में घुटकर मर रही हो, जिसे रात दिन भय, कुंठा, प्रताड़ना के दौर से गुजरना पड़ रहा हो, वह विकासशील सुसंस्कृत संतान कैसे दे सकती है। जिसकी अपनी योग्यताएं दबा दी गई हों, व्यक्तित्व खो गया हो, वह एक अच्छे परिवार का निर्माण कैसे कर सकती है। आज हमारे समाज में कभी सम्मान तो कभी मर्यादा के नाम पर लड़कियों व स्त्रियों को परिवार या समाज में अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। घर के पुरुष अहंकार के दंभ में पारिवारिक मान मर्यादा या ऑनर किलिंग के नाम पर घर की बेटियों या छोटे बच्चों से गलत व्यवहार व उत्पीड़न करते हैं।
पुरुष सदस्य मद्यपान करके नशे में अपनी पत्नी व बच्चों से मारपीट व

0: हिंसक व्यवहार करते हैं। जब परिवार में बच्चे व महिला परिवार के अन्य सदस्यों के क्रूर व अमानवीय व्यवहार से डरे व सहमे हुए होंगे, तो उनका संतुलित विकास कैसे होगा? देश में प्रत्येक घंटे में पतियों या सगे संबंधियों द्वारा महिलाओं को मारने पीटने की 7 घटनाएं दर्ज होती हैं, और कई ऐसी घटनाएं तो दर्ज ही नहीं होती। और इसका मूल कारण है पुरुष व परिवार के अन्य लोगों की वर्चस्व की भावना, जो हर कीमत पर अपना आधिपत्य रखना चाहते हैं। ऐसी दशा में घरेलू हिंसा से पीड़ित परिवार के लोगों से यह आशा करें कि वे स्वस्थ मानसिकता में परिवार का वातावरण परिष्कृत करेंगे तथा महिला अपने बच्चों को योग्य व संस्कारित बनाएगी, तो ऐसे सपने देखना व्यर्थ है, क्योंकि जो स्वयं डरा हुआ, सहमा हुआ व प्रताड़ित हो, वह दूसरे को कैसे सुसंस्कृत बना पाएगा? यह सत्य है कि घरेलू हिंसा के कारण परिवारों में बिखराव आ रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ व महिला घरेलू हिंसा निवारण कानून अक्टूबर 2006 से अस्तित्व में आ गया, लेकिन केवल कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक नीति में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा। यह सार्वभौमिक तथ्य है कि कोई भी कानून सहृदयता, सौम्यता व दयालुता के भाव को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये गुण तो अच्छी परवरिश, मूल्य आधारित शिक्षा और हर एक के लिए संभाव वाली दृष्टि से ही उत्पन्न होते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य, चाहे वे बुजुर्ग हों या बच्चे, माँ हों या पत्नी, बहन हों या बेटी, हमें सबके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अतः राष्ट्र की प्रगति व समाज के विकास के लिए परिवार का उत्थान आवश्यक है, और घरेलू हिंसा के भयानक रौद्र रूप को समाप्त करके ही परिवार को समृद्ध, उन्नत और विकासशील बनाया जा सकता है।
1: साथियों, अभी आपने माला गुप्ता से जाना कि घरेलू हिंसा का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपको कभी ऐसा माहौल दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, शांत रहना है, बस उनका दरवाजा बजा देना है। इससे होगा ये कि एक बार सब शांत होकर यही सोचेंगे कि कौन आया है। पता है, ये घरेलू हिंसा को रोकने के लिए चलाया गया एक अभियान था, बस इसमें थोड़ी देर के लिए लोगों का दिमाग कहीं और लगाना होता है, यानी माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो साथियों, जीवन में सुरक्षा बहुत मायने रखती है, इसीलिए तो हम पल पल आपको सचेत करते रहते हैं।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, इतने सालों से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, कभी आपके मन में ये सवाल आया कि हमारे देश में आकाशवाणी को कितने साल हो चुके हैं? अब ये मत सोचिएगा कि आज हमने तो सवालों की झड़ी लगा दी, चलिए हम ही जवाब दे देते हैं। भाई, ज्ञान सागर में हमें कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान देना ही होता है, तो आज यही सही, आकाशवाणी के सफ़र पर आपको लिए चलते हैं और पहले पहुँचते हैं उस समय में जब इसकी शुरुआत हुई। साथियों, पता है आपको, जून का महीना आकाशवाणी के लिए विशेष महत्व रखता है। 8 जून को आकाशवाणी दिल्ली के अलीपुर इलाके में जो अस्थायी दफ्तर था, उससे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में आकाशवाणी की शुरुआत हुई। भारतीय प्रसारण की बुनियाद BBC के पूर्व अधिकारी लाइलेन फील्डर ने रखी। इन्हें भारत में प्रसारक नियंत्रक के पद के लिए बुलाया गया। लेकिन साथियों, अब आप ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, रोजाना आप यही सुनते हैं ना, ये आकाशवाणी है। वैसे 3 मई 2023 तक ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ही पहचान

0: रखता था। आपको शायद पता ना हो कि महान गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा ने 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया और 1939 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भी रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का चयन किया था। हमारे देश के हर पड़ाव पर आकाशवाणी का साथ रहा। पहली बार आज़ाद देश में 1947 में आकाशवाणी से ही देश की आज़ादी की खबर जो है वो दुनिया को दी गई। देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार पटेल बने और उन्होंने न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करवाई। साथियों, आकाशवाणी को एक बार फिर लाइमलाइट में लेकर आए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो खुद आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात करते हैं। आकाशवाणी को अब 90 साल हो चुके हैं और पूरे देश में इस साल आकाशवाणी के परिवार मिलकर खूब अच्छे अच्छे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी लोग एकत्र हो रहे हैं और एकत्र होकर मिलजुल कर एक दूसरे से पहचान बना रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, क्योंकि साथियों आकाशवाणी हम सबके दिलों में बस चुका है। ये एक आवाज़ है।
1: दूर होते होते वो आवाज़ डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।

साथियों, हम प्रश्न में जिस हवाई अड्डे की बात कर रहे थे वो रांची में है। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि कभी कभी आप खाने में छोटी छोटी सी लापरवाहियां कर जाते होंगे जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, जैसे नींबू और नमक के साथ दूध लेना, बीज वाली सब्जी जैसे भिंडी और करेले के साथ दही या छाछ लेना। ऐसा करने से कई लोगों के शरीर पर सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं जो कि देखने में भी अच्छे नहीं लगते, और उससे एक आत्मविश्वास में भी कमी आती है। तो साथियों, आप खाने के सही कॉम्बिनेशन को लीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजुबाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को है, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की

0: जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Minister Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system.
3: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
4: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड। इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड। इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन

0: एड्रेसिंग दिस एज वेल।
1: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Amir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crores rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support has been provided to OMCs is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. Government has proposed an interim budget allocation of 95,692 crore rupees to the states and union territories to ensure a smooth transition from MNREGA to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan announced this in a media briefing after holding a virtual meeting with the rural development ministers of the states and UTs in New Delhi. He said that the government has asked states and union territories to make necessary preparations ahead of the implementation of the act. Benchmark domestic equity indices ended over 0.5% up today, snapping two-day losing streak. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. And that is the end of this news bulletin.
3: एक हजार पांच सौ तीस किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे स्वच्छ भारत सुंदर भारत विषय पर वार्ता, और वार्ताकार हैं डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता।
4: हम सब मिल हाथ बढ़ाएंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, हम नया सवेरा लाएंगे, भारत को सुरम्य बनाएंगे। जी हाँ, मानव सभ्यता आरंभ से ही सच्चाई, सफाई और सुंदरता पर जोर देती रही है। प्राचीन सभ्यताओं ने स्वच्छता व सुंदरता पर हमेशा बल दिया है। स्वच्छता का सुंदरता से अटूट संबंध है। जो स्वच्छ है वह सुंदर भी है, और जो सुंदर है वही सकारात्मक ऊर्जा का निवास है। ऐसे ही स्वच्छ व सुंदर भारत का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। वे कहा करते थे, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन, जिसका लक्ष्य देश को पूर्णतः स्वच्छ व सुंदर बनाना है, अपना कार्य जोर शोर से कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छ भारत भारत सरकार द्वारा शहरी विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। देश में सफाई बढ़ाने हेतु सरकार स्वच्छता सूचकांक लाने की भी तैयारी कर रही है। इस सूचकांक में देश के सबसे सुंदर 5 शहर सूचीबद्ध होंगे। शहरों के अलावा 5 साफ सुथरी ग्राम पंचायतों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों को भी इस सूची का हिस्सा बनाया जाएगा। सामाजिक व भौतिक स्वच्छता हेतु जनमानस की सोच में परिवर्तन लाना भी बहुत जरूरी है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव के साथ साथ लोगों की मानसिकता शहरों को मलिन करने में बड़ी भूमिका निभाती है। उदाहरण स्वरूप, लोग पान तंबाकू खाकर जहां तहां थूकते रहते हैं। रास्ते में चलते हुए खाली लिफाफे सड़क पर फेंकना आम बात है। ऐतिहासिक स्थलों को गंदा करना लोगों की आदत में शुमार हो गया है। दीवारों पर अपना नाम लिखना लोग अपनी शान समझते हैं, और तो और सरकारी संपत्ति

0: को अपनी बपौती मानकर नुकसान पहुंचाते हैं, पर नहीं, ये सब देश की छवि पर बदनुमा दाग की भांति होते हैं। ऐसा व्यवहार देशवासियों को असभ्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आज शहरीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। गांव कस्बों में और कस्बे शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। बढ़ती आबादी और सीमित साधनों के कारण शहरों का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। शहरों में झुग्गियों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और स्लम बस्तियां एवं बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। अनियोजित विकास ने शहरों को गंदा बना दिया है। जीवनदायिनी नदियां भी मानव के इस प्रकोप से नहीं बची हैं। विभिन्न औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक अपशिष्ट नदी में बहा देती हैं। सीवर के पानी का उचित निस्तारण न होने के कारण वह भी नदियों में स्वाहा कर दिया जाता है और परिणाम से हम सभी भलीभांति अवगत हैं। सरकार को इस समस्या की भीषणता का पूर्ण बोध है, अतः सरकार की ओर से नमामि गंगे जैसी कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और कई पर मंथन चल रहा है। सरकार गंगा के अलावा शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र समेत कई अन्य नदियों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ व सुंदर बनाने की परियोजनाएं चलाने पर कार्य कर रही है। ठोस कचरा प्रबंधन हेतु 1.04 करोड़ घरों में शौचालय, 2.5 लाख सार्वजनिक शौचालय और 2.4 लाख सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण हेतु 11 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत की गए हैं। सरकार कचरे को जैविक खाद और इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दिशा में भी सतत रूप से कार्य कर रही है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति समेत सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालयों व उच्च शिक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों हेतु जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता व सुंदरता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, सेमिनार, डिबेट, नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता आदि आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग को इस अभियान के साथ सक्रिय रूप से जोड़ना है, किंतु इतना काफी नहीं है। जन प्रोत्साहन हेतु अन्य योजनाओं पर भी विचार करना होगा, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मलिनता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए, नदियों को दूषित करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था हो, स्वच्छता अभियान में कल कारखानों को भागीदार बनाया जाए, बच्चों में स्वच्छ रहने की आदत विकसित की जाए, सार्वजनिक शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, सीसी कैमरों के माध्यम से स्वच्छता नियमों का पालन न करने वालों को पहचान कर दंडित किया जाए। भारत को स्वच्छ व हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यदि प्रत्येक भारतवासी द्वारा इसका प्रभावी रूप से अनुपालन किया गया तो आने वाले समय में भारत एक बार पुनः धरती पर स्वर्ग होगा।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विविधा में डॉक्टर पूनम रानी गुप्ता की वार्ता, विषय था स्वच्छ भारत सुंदर भारत।

0: बीडीएम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
3: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं

0: के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक

0: भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास ही के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
3: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए UPSTF, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है।

0: ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडियम वीवी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खास भेंट वार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में आंखों की सुरक्षा और देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह।
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूं आपका दोस्त अनिंद्र सिंह। दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं, धूल, प्रदूषण और बढ़ता हुआ तापमान लेके आता है। असर हमारी त्वचा पे ही नहीं होता बल्कि हमारी आंखों पे भी पड़ता है। आंखों में जलन, सूखापन, एलर्जी, रेडनेस और बहुत सारे इन्फेक्शंस ये आम होते हैं ऐसे मौसम में। तो आज गर्मी में आंखों की सुरक्षा और देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी। पवन जी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
6: नमस्कार सर।
5: डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम हमारी आँखों को किस तरह से प्रभावित करता है और कितने तरह से प्रभावित करता है, पहले तो यही बताएं।
6: विशेषकर गर्मियों में आँखों पर इफेक्ट डालते हैं वो, एक तो स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, दूसरा यूवी रेस, तीसरा डस्ट है
5: जी जी,
6: थोड़ा हीट टेम्परेचर भी,
5: जो ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है 40-45 से ऊपर चल रहा है तो फिर
6: वो भी
5: दिक्कत देता है,
6: हमारी आई पर इफेक्ट डालता है। लास्ट वन है ड्राई एयर, जो आंधी या गर्म हवाएं चलती हैं,
5: लू जी जी,
6: वो भी हमारी आंखों पर इफेक्ट डालती हैं।
5: वैसे आंखों को ऐसा माना जाता है कि आँखों में एक अपना एक प्राकृतिक नमी होती है और जो जब तापमान बढ़ता है या तेज़ धूप होती है तो

0: ये जो आंखों की प्राकृतिक नमी है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब आंखों का जो मॉइस्चर है, जो प्राकृतिक ईश्वर का दिया हुआ है,
0: जी।
1: वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ड्राई आई सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये
0: जी।
1: ड्राई आई सिंड्रोम टेम्परेचर के अलावा और भी बहुत सारे कॉज हैं जिनसे हो सकता है।
0: ड्राई आईज।
1: हाँ जी, जैसे बहुत लंबे समय तक स्क्रीन यूज करना,
0: हाँ, इनकी
1: जो
0: वजह से भी ये आंखों का जो सूखापन है
1: जी
0: होता है। आजकल चूंकि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आपने कहा कि लू चलती है और गर्म हवाएं भी चलती हैं, तो आंखों में ज़्यादातर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर देखने को मिलती हैं?
1: इस समय विशेषतः हाई टेम्परेचर के कारण रेडनेस, ड्राइनेस और इरिटेशन, जलन, खुजली, ये आमतौर पर समस्याएं देखी जाती हैं।
0: अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो धूप होती है उसकी अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज जो होती हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: जी, बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा
0: ये
1: आपने।
0: जो नुकसान है अल्ट्रा वायलेट रेज का, उसको हमारे श्रोता किस तरह समझें, किस तरह ये आंखों के लिए नुकसानदेह होता है?
1: हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक तो तेज धूप में हैट या कैप लगाकर जाएं।
0: गांव
1: दूसरा,
0: में हैं, गांव के अगर
1: हाँ,
0: हमारे श्रोता बंधु हैं तो वो साफा बांध सकते
1: हाँ
0: हैं,
1: हैट और कैप जो है लंबी, जिससे डायरेक्ट सनलाइट आई को ना आए,
0: गमछा बांध सकते
1: गमछा
0: हैं।
1: बांध सकते हैं।
0: ठीक बात।
1: दूसरा है सनग्लासेस आते हैं,
0: हाँ,
1: तो अच्छे यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस को पहनना चाहिए। जो भी श्रोतागण अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे सनग्लासेस आते हैं यूवी रेज प्रोटेक्शन वाले,
0: जी।
1: वो यूज कर सकते
0: अल्ट्रावायलेट
1: हैं।
0: रेस से नुकसान क्या होता है वैसे?
1: अल्ट्रावायलेट रेज से मेन कॉज जो है वो लंबे समय तक अगर अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट हो तो कैटरेक्ट की संभावना हो सकती है।
0: बढ़ जाती है
1: जी
0: आपका जो मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं
1: जी
0: कैटरेक्ट, या जो रेटिना की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो आपको बढ़ने की
1: वो
0: संभावना
1: भी
0: रहती
1: हो
0: है।
1: सकती हैं। और एक और मेन जो है प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको हम नाखूना बोलते हैं,
0: मतलब क्या होता है ये?
1: ये एक नेजल साइड से कॉर्निया की तरफ एक मोटी झिल्ली सी बन जाती है।
0: अच्छा।
1: उसमें इरिटेशन भी होता है और उसमें रेडनेस भी होती है,
0: खुजली
1: जो
0: भी होगी और लालिमा भी रहेगा।
1: लालमा भी होती है।
0: हाँ,
1: वो देखने में, सामने वाले व्यक्ति को देखने में अच्छा नहीं
0: महसूस होता
1: महसूस
0: है।
1: होता।
0: अब आपने जैसे कहा था कि जो ड्राई आई की समस्या है, गर्मी में ये आंख में सूखेपन की समस्या बढ़ क्यों जाती है?
1: हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड से जो टीयर्स सिक्रीट होते हैं, आंसू बनते हैं,
0: जी।
1: वो आंसू जो है टेम्परेचर के कारण वेपोराइज होने लगते हैं।
0: पहले ही जो है वो सूखने लगते हैं,
1: जी
0: वो आपकी आंख से बाहर तक नहीं आ पाते या आंख में
1: हाँ,
0: नहीं आ पाते, तो वो
1: वो
0: सूखी मालूम
1: जी
0: चल
1: जी
0: पड़ती है।
1: मतलब देसी भाषा में कहेंगे बाष्पीकृत हो जाना।
0: जो ड्राई आई हो रही है इसके लक्षण हमको कैसे नजर आएंगे?
1: ये शुरू शुरू में तो वाटरिंग और इरिटेशन होता है,
0: मतलब आंखों से पानी
1: आंखों से
0: आएगा।
1: पानी, एक्सेसिव पानी आता है, अधिक
0: अच्छा।
1: मात्रा में पानी आता है। दूसरा, हल्की सी जलन भी होती है, लेकिन अगर यही कॉज लंबे समय तक चले तो फिर रेडनेस भी हो जाती है।
0: आंखों में लालिमा भी पड़ेगी।
1: जी, और पेशेंट जो है बार बार आई को ब्लिंक करता है,
0: पलक
1: जिससे
0: झपकाता
1: पलक
0: रहेगा।
1: झपकाता रहता है, जिससे वो आंसू बनते रहे।
0: अब आते हैं कि साहब गर्मी में बहुत ज़्यादा आंधी का भी हमें प्रकोप झेलना हो पड़ता है, धूल उड़ती है, बहुत सारा प्रदूषण हमारे इर्द गिर्द होता है, ये सब चीज़ें जो है आंखों में एलर्जी पैदा करती हैं, और इससे कैसे बचा जाए वो एक बड़ी समस्या होगी।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, इस समय लू चलती है और आंधी भी चलती है। आंधी के कारण जो है कई बार पेशेंट को समस्याएं आती हैं कि आंख में कुछ पड़ गया, फॉरेन बॉडी भी आंख में आ जाती है, तो उससे भी काफ़ी हमारी जो कॉर्निया है उसके लिए नुकसान है। वो फॉरेन बॉडी निकालनी ही पड़ती है। कुछ फॉरेन बॉडी तो बार बार आंख को वॉश करने से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है वो स्टिक हो जाती हैं जो किसी से भी नहीं निकल सकती हैं। फिर वो डॉक्टर की एडवाइस लेनी ही पड़ती है।
0: तो ऐसे में

0: अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी आपकी आंख में चली जाती है, तो क्या वो सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत होती है?
1: जी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को आई को रब नहीं करना है,
0: आंखें रगड़नी नहीं
1: आंखें
0: है।
1: रगड़नी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें। अगर आसपास कोई मेडिकल स्टोर है तो उससे एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं।
0: जी, गर्मी की चूंकि छुट्टियां होती हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बच्चों का जो फ्री टाइम है वो बढ़ जाता है, और मोबाइल और वीडियो गेम जो है वो खूब देखते और खेलते हैं। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि उनकी आंखों पर ये चीज़ें तो असर डालेंगी।
1: बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि वो समय समय पर ही वीडियो गेम या टीवी या मोबाइल या अन्य गैजेट यूज करें। थोड़ा पेरेंट्स को चाहिए कि उनमें जो भी बच्चे गेम खेल रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखें।
0: मतलब टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने देर बाद आप खेल सकते
1: जी,
0: हैं।
1: कुछ ऐसा पेरेंट्स को बनाना चाहिए शेड्यूल कि जैसे 1 घंटे आपने स्क्रीन देख ली, स्क्रीन पर वीडियो गेम वगैरह खेल लिए, उसके बाद आउटडोर एक्टिविटी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, उनको खेलने के लिए बाहर निकलते वक्त क्या-क्या सावधानियां पालन करनी है वो भी थोड़ा बता दें।
1: जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी बच्चे बाहर जाएं, बीच बीच में पूरी तरह से पानी इंटेक करते रहें, मतलब
0: पानी पीते रहें
1: पानी
0: लगातार,
1: पीते रहें, मतलब
0: जो अक्सर कर भूल जाते हैं
1: भूल
0: बच्चे।
1: जाते हैं बच्चे, खेल खेल में पानी पीना भूल जाते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड करना बहुत ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम जब आता है और तेज़ धूप के बाद बहुत संक्रमण भी बहुत बढ़ता है, और आँखें जो है कंजंक्टिवाइटिस जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की समस्याएं आम तौर पर बहुतायत में देखने को मिलती हैं, क्या वजह होती है इसकी?
1: इस मौसम में चूंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस 2 तरह की मोस्टली होती है, एक बैक्टीरियल और वायरल। तो इन दोनों तरीकों में दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अगर ये परेशानी आपको दिख रही है तो तुरंत जो है डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए।
0: वो बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: समझना कि आप खुद ही डॉक्टर ना बने।
1: हाँ
0: आँखों में रेडनेस हो जाए, आपने कहा कि इरिटेशन होता है, खुजलाहट होती है, या वाटरिंग जिसको आपने कहा कि पानी आने लगे, तो शुरुआती स्तर पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या करने की ज़रूरत होती है?
1: शुरुआती जो लक्षण हैं उनमें जैसे वाटरिंग है या इरिटेशन है, जलन है, तो उसमें पेशेंट जो है अपनी आईज को बार बार वॉश कर सकता है,
0: आपको ठंडे पानी से धोना है।
1: नॉर्मल वाटर से,
0: अच्छा,
1: सादे पानी से
0: हाँ,
1: उसको कई बार आप
0: दिन में
1: धो
0: धोइए।
1: सकते हैं।
0: कई लोग जो है ऐसा देखा जाता है कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के और आई ड्रॉप घर में रखी है कोई पहले की, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है?
1: ये बहुत ही खतरनाक है सर। आई ड्रॉप पर मेंशन होता है कि आई ड्रॉप ओपन करने के 1 महीने तक ही यूज करने के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम से वो रखी हुई आई ड्रॉप तो यूज नहीं करनी चाहिए।
0: अच्छा, कई
1: तो
0: लोग डॉक्टर साहब जैसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो उनको इस गर्मी के मौसम में क्या अतिरिक्त सावधानियां लेने की ज़रूरत रहेगी?
1: कॉन्टैक्ट लेंस वाले पेशेंट को हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट लेंस में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है तो बॉडी में भी पानी की मात्रा होनी चाहिए,
0: हाइड्रेशन आपको बनाए
1: हाइड्रेशन
0: रखना है।
1: बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंस इस मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जितना पॉसिबल हो उतना कम यूज़ करें।
0: अच्छा, गर्मी का जब मौसम आता है तो बहुत से लोग वाटर गेम्स खेलते हैं, या कहें कि वाटर पार्क्स में जाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो ऐसे जो कॉन्टैक्ट लेंस जो पहनते हैं लोग, उनके लिए क्या सहूलियत बरतने की, ये कॉन्टैक्ट लेंस पहनना क्या स्विमिंग पूल्स में सुरक्षित है?
1: ये सर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और

0: ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग पूल में जाएं।
1: गर्मी में अगर हम कहें तो जो हमारा भोजन है, फूड इनटेक है, आंखों के नज़रिए से अगर देखें तो हमारे भोजन में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो सम्मिलित होनी चाहिए, जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, उनकी देखभाल को बेहतर बना सकें।
0: वैसे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन ए एसेंशियल फूड्स बहुत ज़रूरी हैं,
1: जैसे
0: जैसे कैरेट है, गाजर, या इस मौसम में पीले फल जैसे कुछ आम खा सकते हैं,
1: जी
0: आम का मौसम है तो आम ले सकते हैं। और जो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स से भरपूर चीज़ें हैं उनको भी लेना चाहिए। हरी सब्जियां आप जो हरे पत्तेदार सब्जियां आप ले सकते
1: जाते जाते
0: हैं।
1: हमारे श्रोताओं के साथ अगर कोई चीज़ आप साझा करना चाहें डॉक्टर साहब।
0: यही एक मुख्य बात है जो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
1: उसमें कतई कोताही न
0: हाँ
1: बरतें। अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना वो बहुत आवश्यक है।
0: आंखों में लापरवाही और दुख का कारण बन सकती है
1: समस्या को और गंभीर कर
0: और
1: सकता
0: गंभीर
1: है।
0: कर सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने जो आज गर्मियों में आंखों की देखभाल से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, निश्चित रूप से हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुनी डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता से अनिंद्र सिंह की बातचीत। विषय था गर्मी के मौसम में आंखों की सुरक्षा और देखभाल। आइए सुनते हैं इसी मौजू पर ये गर्मी से सराबोर गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। दोस्तों, गर्मी का मौसम वर्ष के सबसे गर्म मौसमों में से एक माना जाता है। इस दौरान सूर्य की किरणें अधिक तीव्र हो जाती हैं और तापमान काफी बढ़ जाता है। दिन लंबे और रातें अपेक्षाकृत छोटी हो जाती हैं। कई स्थानों पर लू चलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी के मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ताजे फलों का सेवन करना और धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखना बेहद आवश्यक है। दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर जाने से बचना चाहिए। आम, तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसे फल इस मौसम में शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं।

वैसे दोस्तों ये मौसम बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां भी लेकर आता है जिनका वो पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। वहीं किसानों के लिए ये समय खरीफ फसलों की तैयारी का भी होता है। गर्मी हमें प्रकृति के महत्व का एहसास कराती है, इसलिए हमें जल संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित रखने में अपना योगदान भी देना चाहिए।

आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भारत की बेटियां और आजादी की लड़ाई विषय पर, और मैं हूं इस शाम का मेजबान अली। दोस्तों, हम बात करेंगे उन वीरांगनाओं की जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमारी धरती मां को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

साथियों, अक्सर इतिहास की किताबों में हम पुरुष योद्धाओं के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन सच ये है कि महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहस, त्याग और बलिदान से इतिहास रचा। भारत की आजादी को एक दिन में मिली जीत नहीं थी, ये लंबा संघर्ष था जिसमें लाखों स्त्री पुरुषों ने भाग लिया। महिलाएं न सिर्फ घर संभालती थी बल्कि मोर्चे पर उतरकर अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती भी देती थी। किसी ने कलम उठाई, किसी ने तलवार, तो किसी ने जेल की यातनाएं। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में महिलाओं का जज्बा देखने लायक था। रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। जब अंग्रेजों ने उनके राज्य पर कब्जा करना चाहा तो उन्होंने अपनी तलवार से सामना किया। घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेज जनरल भी चकित रह गए।

खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने जनता को संगठित किया और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। वैसे इन वीरांगनाओं ने दिखा दिया कि महिलाएं केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दुश्मन के सामने डटकर खड़ी भी हो सकती हैं। 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपना शासन और मजबूत किया, लेकिन भारतीय महिलाओं का जज्बा और भी बढ़ गया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर देशभक्ति की राह पर आगे बढ़ी। सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, वो कवित्री थी पर साथ ही राजनेता भी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की और कई बार जेल गई। एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की थी, लेकिन भारत की आजादी के लिए दिल से लड़ी। उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया और भारतीयों को अपने हक के लिए खड़े होने की प्रेरणा भी दी। कस्तूरबा गांधी बापू के साथी होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी भी थी। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया, सत्याग्रहों में भाग लिया और जेल भी गई।

दोस्तों, जहां एक ओर कुछ महिलाएं अहिंसा के रास्ते पर थीं, वहीं दूसरी ओर कई वीरांगनाएं क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होकर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहती थीं। लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में उन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। ये सेना पूरी तरह महिलाओं की थी, जो हथियारों के साथ मोर्चे पर लड़ने को तैयार रहती थी। कली पचाड़ी दुर्गावती देवी, इन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की मदद की। दुर्गावती देवी तो भगत सिंह को पुलिस से बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले गई थी। भीकाजी कामा, विदेश में रहकर उन्होंने आजादी का काम किया। उन्होंने पहली बार भारतीय तिरंगा विदेश में फहराया और भारत की स्वतंत्रता की आवाज दुनिया तक पहुंचाई। जब जब आंदोलन हुए, गांव गांव की साधारण औरतें भी आगे आईं। नमक सत्याग्रह के समय हजारों औरतों ने गांव गांव जाकर नमक बनाया, कानून तोड़ा और जेल गईं। शहीद चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी दोनों ने कहा था कि आंदोलन को ताकत देने का असली काम महिलाओं ने किया है। महिलाएं अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी थीं।

दोस्तों, आजादी की लड़ाई में अगर पुरुषों के साहस की गाथा है तो महिलाओं का त्याग, साहस और बलिदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा से लेकर कस्तूरबा गांधी तक ये सूची बहुत लंबी है। हर महिला ने अपने ढंग से योगदान दिया और आज हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार भी दिलाया। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आजादी की यह धरोहर सिर्फ पुरुषों की नहीं है बल्कि उन बहन बेटियों की भी है जिन्होंने अपने लहू पसीने से इस धरती को सींचा। यही था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, आजाद की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका। इन्हीं प्रेरणादायी कहानियों से हम आगे भी अपने देश को बेहतर और मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे।

आप सुन रहे थे देशभक्ति पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम भारत भारती। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत और जानेंगे कुछ ऐसी जानकारी जिनसे हैं हम सब अनभिक। दोस्तों, भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान और पशुपालन में अग्रणी देश रहा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है। यहां करीब 150 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन होता है, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, जो 2015 में बना था।

दोस्तों आज हम चंद्रमा और मंगल ग्रह तक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन भारत के इसरो ने 1963 में त्रिवेंद्रम की एक जगह थुम्बा में एक चर्च से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। रॉकेट को साइकिल पर इस लॉन्चिंग

का बोलबाला है। इसी प्रतिस्पर्धा में आज भारत भी किसी अन्य देश से पीछे नहीं है। आज भारत करीब 90 से अधिक देशों में अपने यहां बने सॉफ्टवेयर निर्यात करता है।

अभी आप आनंद ले रहे थे चित्रपट संगीत का 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में

बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम

0: एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5,00,000 रुपए मिलेगी।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल

0: He holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। अब खबरें तफसील से। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है। जनाब जायसवाल ने इन्हें पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 200 जख्मी हो गए। हुकाम की जानिब से सिविल सोसाइटी के सरकर्दा इत्तेहाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इकतसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकतसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्जान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने

0: ने मुल्क के हिफ्जाने सेहत के निजाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज्यादा काबिल रसाई, कम खर्च और मियारी हो गई हैं। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक व इक्तसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी की खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: फायदा होगा, क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
0: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नजदीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वजीर आजम ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने, जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुजाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम मोदी इतवार के रोज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का स्लोवाकिया का यह पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैन अलाक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और यह तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की

0: संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के कयाम को मंजूरी दे दी है। यह निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। यह अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का हासिल

0: खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। ये अपनी नौईयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तआवुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का अबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, जरई तजारत, माहौल दोस्त जरई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूद पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तिहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें यह यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तिहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तिहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेशकदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सह फरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Money Talks.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
2: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया, और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है, और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
1: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
2: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं, और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहने हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही है कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कमिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
2: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें

0: होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रति एक माह के 9 तारीख में आती हैं, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल।
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
0: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग ने सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC, पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 + 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा। हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स। और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो?
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
1: जी,
0: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है

0: 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटरनल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है, वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70%, मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
0: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो
1: जी
0: एक-एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलोअप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहाँ पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है,
1: जी
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है। तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें
1: जी
0: हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक-एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलोअप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे
1: जी
0: मनता है,
1: जी
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के ऊपर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में, जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था तो ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
2: जब मैं गांव गई थी ना तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट चार विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम

0: एक तो मैच जीत के हम लोग आए और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला हुआ में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, उसका मुझसे सब लोग मिले। लाइक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए। तो जो मैंने आज उनको करके दिया तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी। पहले तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लगे, रन पड़ गए मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आएंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर्स प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे। क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते, और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है, और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा, बहुत
2: दो बच्चे बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं, और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले
1: जी।
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है,
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
2: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साईं स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट, उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि

0: आप कल छतरपुर लेके आ जाइए तो
1: हम्म,
0: इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको
0: तो
1: लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत, उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: तो
1: सहयोग
0: उससे,
1: किया।
0: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। पर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ,
0: तो करीब 1 हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा, मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ। उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में। ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह।
0: तो हाँ, तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड, दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के भी देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल में।
1: एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे
0: बाकी
1: पहुंची हैं।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए, हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौर जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: इतना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ थोड़ी
1: जी
0: परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी भी
1: जी
0: वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा,
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हील चेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई।

0: मुंबई प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
1: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
1: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी,
1: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
1: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
0: जी
1: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
0: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
1: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेला।
0: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
1: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
0: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
1: व्हीलचेयर के साथ में ही जाते हैं।
0: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
1: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
0: जी,
1: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
0: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
1: में था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
0: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
1: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
0: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
1: जी जी,
0: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
1: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
0: जी,
1: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे
0: जी,
1: प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
0: जी, बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे
0: जी,
1: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे
0: जी,
1: तो देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
0: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं

0: बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इस विषय में हमने बातचीत करी।
1: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
0: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
1: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
0: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
1: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे शिकार हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
1: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
0: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान के स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
0: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
0: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
1: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ता है। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे कहते लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
0: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
1: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
0: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
1: उसको बारीकी बताते हैं।
0: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
1: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में ही सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
0: परेशानी तो नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हरा

0: आकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
1: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
2: शुक्रिया।
1: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
2: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग

0: के थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
1: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
0: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस। एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
1: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
0: मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट दे के ही निकलना है यहाँ से, खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है,
1: क्या
0: बस ये है वहां से। फिर
1: कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
0: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CISF में हूँ, वहां पे कोच के उस उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो एक बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर हैं और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, अगर
1: जी
0: आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं
1: चलिए,
0: बोल नहीं सकती कि
1: लेकिन
0: क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं
1: हमारी
0: लगी हूँ
1: मनोकामना है।
0: प्रैक्टिस
1: और
0: पे।
1: इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
0: जी
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप। खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। खेल दर्पण।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज, और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। समय हुआ है 10:30। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में पंडित रामकृष्ण से क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मारू बिहाग।

अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित रामकृष्ण और पंडित कार्तिक कुमार से शास्त्रीय संगीत। मेरे अनुरोध 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजने को ही आइए, अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले

0: सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community.